एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026, समय 5:56 मिनट 10 सेकेंड। आरंभ आज की सभा का मंगल ध्वनि के साथ।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है हिंदी में समाचार और उसके बाद विविध भारती मुंबई से प्रसारित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार कुछ क्षण का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हुरमुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

俊本。किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूवाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का।

प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10 बजे। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11 बजे सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1 बजे, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3 बजे। पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिषिक्त गांधार का भाग 2। लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4 बजे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन ने सुने चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल। प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर। लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दारवेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा 7:05 पर और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा 7:10 पर। हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनिए 7:10 पर।

विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति कार्यक्रम आज के फनकार का समय रहेगा 9:30 पर और 10 बजे सुनिए महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच, जिस पर चर्चा होगी आवारा और पालतू श्वास कुत्तों की समस्याएं पर और वार्ताकार होंगी रश्मि।

विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति कार्यक्रम पल पल दिल के पास का समय रहेगा 12 बजे और प्रादेशिक समाचार सुनिए 1:05 पर।

प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:10 पर। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत 6:20 पर।

6:30 पर सुनिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण।

ईमेल पर आधारित कार्यक्रम सुनिए रात 10 बजे। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार। इंतजार कुछ क्षण का।

इदानीं वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं सम्प्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्।

0: सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चन्द्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यन्त शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थम् उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् यानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। इंतजार बस कुछ क्षण का।

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज आपके लिए बटेरी फिल्म का गीत संगीत लेके आए हैं। हरियाणवी लोक परंपरा और लोक संगीत बड़ी धनाढ्य रही है। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल ने कामयाबी और प्रसिद्धि का जो इतिहास रचा उसके बाद तो हरियाणवी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हरियाणवी फिल्मों को मिले।

हरियाणवी फिल्मों को ये पुरस्कार मिलने के बाद हरियाणवी सिनेमा के सुनहरे दिन आने की आस जागी। आदमी की जिंदगी में आशा और निराशा ऐसे पहलू हैं जो आमतौर पर देखे जाए। सिनेमा एक ऐसा सशक्त माध्यम जिसमें पुरानी संस्कृति, परंपराएं, आस्थाएं, कलाएं लोगों तक पहुंचे और सुरक्षित रह सके। हरियाणा प्रदेश तो ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। इस धरती पे सृष्टि को कर्म और धर्म का संदेश दिया गया। आड़े की संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को इसे रूबरू करवाने के लिए सिनेमा ते बढ़िया साधन और के हो सके है। जिस डाल आदमी के जीवन में कदे पतझड़ कदे बसंत, उसे डाल हरियाणवी सिनेमा ने भी उतार चढ़ाव देखे हैं।

हरियाणवी फिल्म बटेऊ अपने टेम की खासम खास फिल्म रही। इस टेम के लोकगीतों का गुंजारा देहाती लोगों के सिर चढ़ के बोलिया। हरियाणवी फिल्म बटेऊ का ठेठ हरियाणवी बोली में खूब बढ़ावा मिला। हरियाणवी फिल्म बटेऊ का गीत संगीत

हरियाणवी फिल्म बीरा सेरा धरती बहु रानी चंद किरण चंद्रावल मारा पीर सासरा छेल गेला जांगी लाडो बसंती मारी धरती मारी माँ बेरी फूल बदन चांद चकोरी चंद्रो लीलो चमन छोरा जाट का गुलाबो मुकलावा चंद्रावल बाग दो माटी करे पुकार कुणबा पोर दादा लक्ष्मी चंद के गीता का जादू आज भी हरियाणवी लोक संस्कृति की छटा बिखेरे है।

मारे लोग गीता का असर हरियाणवी फिल्मा में भी देखा जाए। पुराने टेम के वाद्य यंत्रा का मीठा गीत संगीत अपनी लोक संस्कृति को सहजने और आगे बढ़ाने में सफल रहा। मारे इन लोक गीता का प्रचार और प्रसार आज भी कामा में देखा जाए।

हमारी लोक परंपराएं, लोक संगीत और लोक संस्कृति बड़ा ही धनाढ्य रही है। आज हमारा फर्ज बना है अपने संस्कार संस्कृति को बचा कर रखें, सहेज कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने गौरव में इतिहास को जान के अपने आप को धनाढ्य महसूस करें। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, सभी का स्वागत कार्यक्रम सुप्रभात में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना ठकराल। सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। आज शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का दिन है रविवार का। शक संवत 1948, कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि। सूर्य उदय का समय रहा लगभग सुबह 5:27 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा लगभग 7:27 पर। सूर्य की पहली किरण केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि यह संदेश भी लाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाइए और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत कीजिए। शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना से।

दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम की। आज हिसार में गर्मी का असर बना रहेगा। दिन के समय तापमान लगभग 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के

तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना भी बन सकती है। ऐसे मौसम में कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। घर से निकलते समय पर्याप्त पानी साथ रखें। दोपहर की तेज धूप में लंबे समय तक रहने से बचें। हल्के और सूती वस्त्र पहने। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष

और अब हम श्रोताओं लेते हैं गीता के कुछ श्लोक। योग कर्मसु कौशलम बद्धि युक्त जताहित उसे स्वीकृति दृष्कृते तस्मोदगाय युजस्वय योग कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का 50वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर संदेश देते हैं। योग केवल ध्यान या साधना का नाम नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा, एकाग्रता और उत्कृष्टता के साथ करना ही योग है। इसीलिए कहा गया है योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता और समर्पण के साथ करना ही योग है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति, कोई शिक्षक, कोई किसान, हर कार्य को पूरी निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ करता है। कोई डॉक्टर है, कोई गृहिणी है, हर व्यक्ति के अपने कर्तव्य हैं। यदि हम अपने कार्य को केवल मजदूरी समझकर करेंगे तो उसमें आनंद नहीं आएगा, लेकिन यदि हम उसे सेवा, जिम्मेदारी और ईमानदारी की भावना से करेंगे तो वही कार्य साधना बन जाता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है सफलता केवल बड़े परिणामों से नहीं मापी जाती। एक छोटा सा कार्य भी यदि पूरी लगन और सच्चाई से किया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। एक माली रोज पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देता है, तभी एक दिन वही पौधा विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतें और निरंतर प्रयास ही बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। और अब लेते हैं गीता का दूसरा श्लोक।

नाहि कल्याण कृते दुर्गति तात गच्छति। इसका उच्चारण है, भगवान श्री कृष्ण इस छोटे से श्लोक में जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, दूसरों का हित सोचता है, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कभी भी अंतिम रूप से अहित नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारी मेहनत कोई फल नहीं दे रही। हम पूरी लगन से कार्य करते हैं, फिर भी सफलता किसी और को मिल जाती है। ऐसे समय में मन निराश होने लगता है और व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करने लगता है। लेकिन गीता का यह संदेश हमें धैर्य रखना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर अच्छा कर्म एक बीज की तरह होता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। इसीलिए हमें यह श्लोक सिखाता है, ईमानदारी, करुणा, सेवा और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कभी असफलता मिले तो उसे अंत नहीं बल्कि सीख और नए अवसर की शुरुआत समझना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और अपने मूल्यों को समझता है, उसके जीवन में सफलता और सम्मान अवश्य आते हैं।

एक गांव में एक कुशल मूर्तिकार रहता था। एक दिन उसे रास्ते में दो पत्थर दिखाई दिए। वह दोनों को अपनी कार्यशाला में ले आया। जब उसने पहले पत्थर पर चेनी और हथौड़ी चलानी शुरू की तो पत्थर दर्द से चिल्लाकर बोला, मुझे मत मारो, मैं यह पीड़ा सहन नहीं कर सकता। मूर्तिकार ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे एक और रख दिया। इसके बाद उसने दूसरे पत्थर पर काम करना शुरू किया। छेनी और हथौड़ी की हर चोट उसको भी दर्द देती थी, लेकिन उसे ने धैर्य नहीं खोया और वह चुपचाप सब सहता रहा। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद वही पत्थर एक बहुत सुंदर मूर्ति का रूप ले चुका था। कुछ समय पश्चात उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। श्रद्धालु वहां आते, सिर झुकाते और श्रद्धा के फूल अर्पित करते। उधर पहला पत्थर वह मंदिर की सीढ़ी बन गया। लोग रोज उस पर पैर रखकर मंदिर में प्रवेश करते। एक दिन सीढ़ी बने पत्थर ने मूर्ति से कहा, हम दोनों एक ही स्थान से आए थे, फिर भी तुम्हें इतना सम्मान और मुझे यह स्थिति क्यों मिली? मूर्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, जब समय ने हमें तराशना चाहा, तब तुमने चोटों से बचने का रास्ता चुना, मैंने उन्हें सहन किया, वही चोटें आज मेरे सम्मान का कारण बनी है। तो प्रिय श्रोताओं, ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ वास्तव में हमें निखारने का अवसर देती हैं, और जो व्यक्ति धैर्य, साहस और परिश्रम के साथ संघर्षों का सामना करता है, वही सफलता और सम्मान का अधिकारी बनता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष की चोटें ही हमारे व्यक्तित्व को तराशती है, और जो उन्हें सहन कर लेता है वही जीवन में सबसे अधिक चमकता है।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे।

0: भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रधान होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था

0: को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागही ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागही ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: के जा जा जा जा जा तू जा।
1: दोस्तों, दिन भर के आपाधापी संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है, जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है। ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
2: कहीं दूर जब दिन

सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनारू
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, आरको का संगीत है, फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम के अगले नगमे। रावण फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अकॉन और हमसिका अय्यर की आवाजों में। विशाल ददलानी ने इसकी रचना की है, संगीत है विशाल और शेखर का।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मीका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य, नक्श और प्रीतम की आवाजों में एजेंट विनोद फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

मुझको डांटे, औरों के गालों में पप्पी, मेरे ही गालों में चांटे। लाला है क्रिकेट की जैसी, तबले पे क्रिकेट की जैसी, लिपस्टिक का सपना लगा दी है गालों में। तू मुझे

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एनीबडी कैन डांस। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहित चौहान, प्रिया पंचाल और तन्वी शाह की। मयूरपुरी ने बोल लिखे हैं, सागर जिगर का संगीत।

हम आपको याद दिला दी साथियों कि आज अभिनेता भारत भूषण का जन्मदिन है, तो आज के फनकार कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा वो केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। सुनते रहिए विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दुदलानी की आवाज में उन्हीं का लिखा गीत, संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अब सुनिए नीव ब्रोज और नेहा कक्कर की आवाजों में। कुमार के बोल है नीव ब्रोज का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं रोशन वर्गीज की आवाज में जुबान फिल्म का गीत। वरुण ग्रोवर और आशु पाठक ने इस गीत को लिखा है। आशु पाठक का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए सुनिए दीप मणि और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मेघ ब्रोज का।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप ABO की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मरता भी नहीं, जन मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा।
1: बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, मां, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे।

0: विभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: सपने झरे फूल से।

हाय धूप ढल गई पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई पात पात जल गए कि शाख शाख जल गई चाहता

0: देख तेरे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनाऊं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार।
3: आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कुछ तारीखें, कुछ लम्हे और कुछ खास दिन होते हैं और वो वक्त के सैलाब में भी फीके नहीं पड़ते। ये वो सुनहरी यादें होती हैं जो दिल के कोने कोने में बस जाती हैं, हर दर्द को सहलाती हैं।
1: दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी मंच, महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम। विषय है आज का पालतू और आवारा कुत्तों की समस्याएं।
0: कुछ तारीखें, कुछ लम्हे और कुछ खास दिन होते हैं और वो वक्त के सैलाब में भी फीके नहीं पड़ते। ये वो सुनहरी यादें होती हैं जो दिल के कोने कोने में बस जाती हैं, हर दर्द को सहलाती हैं और हर खुशी को दोगुना कर देती हैं। ये यादें हमारे जज्बातों की वो कश्ती है जो हर तूफान में हमें किनारों तक पहुंचा ही देती है। और मैंने ऐसा ही एक रिश्ता है आपका और हमारा, मतलब आज रविवार की सुबह कार्यक्रम नारी मंच में स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जो इतवार का दिन आता है ये अकेले नहीं आता। घर के वो तमाम काम जो एक हफ्ते तक हम छोड़ देते हैं कि रविवार को करेंगे, वो सब कर रहे होते हैं। और आजकल तो देखिए ना, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, हमारी बहनें या तो मायके होकर आई हैं या मायके जाने की तैयारी में हैं। बहन बेटियां जिस महीने का पूरे साल इंतजार करती हैं वो महीना चल रहा है। ढेर सारे काम, बाजारों के मटर गश्ती, खूब सा बनाना, कुछ अलग सा खिलाना और अपनी पाक कला के जौहर मनवाना, बस यही कुछ चल रहा है हर घर में। इसी के साथ साथ बहनों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अक्सर आपने देखा है अखबारों की खबरों में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है कि चाहे आवारा कुत्ते हों या पालतू कुत्ते, उनके व्यवहार में कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं। और ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, चाहे घर के पालतू कुत्तों की बात की जाए या सड़क गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इनके व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं और हम इंसानों को किस किस्म के बदलाव अपने व्यवहार में, अपने जो कह सकते हैं तौर तरीके हैं उनमें करना है, यही सब कुछ जानकारी आज प्राप्त करेंगे। और इसके लिए आज कार्यक्रम नारी मंच में मेहमान के रूप में शिरकत करने पहुंची हैं डॉक्टर किरण सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आरएमसीएस सीओसीएस और संबंध रखती हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से। इन्हीं का साथ दे रही हैं कनिका परूथी जी, जो कि पहले विज्ञापन की प्रोफेशनल में रही हैं, लेकिन अपना जॉब छोड़कर उसके बाद इन्होंने अपना समर्पण दे दिया जानवरों को संभालने के लिए। एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगभग पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हैं। तो बातें करेंगे कार्यक्रम नारी मंच में डॉक्टर किरण सिंह और कनिका परूथी जी से। तो आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यही जानते हैं कि चाहे पालतू जानवर हो या फिर सड़क पे घूमने वाले हमारे वो चौकीदार जिन्हें हम अक्सर आवारा कुत्तों के नाम से संबोधित कर देते हैं, ये पहले भी थे। हमारे जो संस्कृति है उसमें आज भी पहली रोटी गाय और कुत्ते के निकाली जाती है। लेकिन क्या हुआ, क्या समस्याएं आ गई कि इनके व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा? सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण सिंह जी से कि क्या बात है, क्या कारण है कि ये खबरें अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बनती जा रही हैं।
2: रश्मि जी, ये एक बहुत आज के टाइम में बड़ा मेन प्रश्न है, पर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समस्या तो शायद सदियों से रही हो, क्योंकि इंसान और कुत्तों कहो या आवारा जानवर कहो, उनका तालमेल तो सदा से ही रहा है। और हम सब का एक प्रथा भी रही है घर में पहली रोटी निकालना और ये करना, पर क्योंकि अब मीडिया हो गया है और मीडिया ने दुनिया को छोटा कर दिया है, तो शायद वो रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो समस्या उसको बड़ा बना दिया गया है या बड़ी हो गई है। वाकई तो पहले से जो सिस्टम था वो ही चल रहा है, और अब तो बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं और बहुत सारी हमारी प्रणाली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू करी है, जिसमें से आप नसबंदी कह सकती हैं जो एबीसी के रूल्स में है, उनकी नसबंदी करना, वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है लाला लाजपत राय, वो जो वैक्सीनेशन का एक पर्टिकुलर डे रेबीज एंटी रेबीज डे सेलिब्रेट करती हैं, वो उन सब डॉग्स को इंजेक्शन लगाते हैं और सबको बोलते हैं भी आइए फ्री में लगवाइए। और हम लोग भी, जितने भी लोग थोड़े से जागरूक हैं और सेंसिटिव है, वो अपने एरिया वाले डॉग्स का ध्यान रखते हुए उनको रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाते हैं, और उनका मतलब सिर्फ खाना नहीं दे रहे हैं और भी उनका वो कर रहे हैं। अगर कोई डॉग बहुत बार बच्चे दे चुकी है तो ये गली वाले मिलके हम सब लोग उसको ऑपरेट करा के न्यूटर्ड करा सकते हैं, तो हमारी जो ये जनसंख्या बढ़ रही है वो भी कंट्रोल रहेगी, और प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो बेचारे हैं ये तो लाचार है, इनको गर्मी से जूझना है, इनको बारिश से जूझना है, हम लोग तो घर में पकौड़े खा रहे होते हैं बारिश में, पर ये लोग तो बेचारा अपना सर्वाइवल ढूंढते हैं सर्दी में गर्मी में, और इनको भोजन भी नहीं मिल रहा, कोई कूड़ा देख रहे हैं, कूड़े में से कुछ निकाल रहे हैं, क्योंकि सब जगह सब लोग नहीं शायद दे रहे होते
0: बिल्कुल
2: खाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जीव हैं बेजुबान हैं, ना अपनी जरूरत बता सकते हैं, ना अपनी तकलीफ बयां कर सकते हैं। समस्या इनके साथ भी हैं, चाहे वो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते हों, या फिर बात करें जाए तो पालतू जानवरों की बात भी हम करेंगे। डॉक्टर कनिका परोधी जी, जैसा कि आप एडवर्टाइजिंग के पेशे से जुड़ी रही, जो कि खासा लुभाता है लोगों को, उसको छोड़कर आपका एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकाव कैसे हुआ?
3: ये तो देखिए बचपन की चीज होती है, आपके पेरेंट्स आप में ये चीज डालते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग वैसे बड़े हुए हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें ये सिखाया गया है कि जो आसपास आपके जीव हैं आपको उतना ही उनका ध्यान रखना है जितना आपने अपना रखना है, चाहे जीव हो चाहे पेड़ हो, वो सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। तो और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आसपास देखा कि ये किताबों में ज्यादा है रियलिटी में कम है, मतलब हम लोग थोड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मीन हो गए हैं, तो हम अपने फायदे के लिए उनको किसी भी लेवल का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते करते फिर पता ही नहीं चला कि कब हम फुल टाइम इसमें आ गए,
0: बिल्कुल
3: तो ये
0: बिल्कुल।
3: चीज है।
0: तो डॉक्टर किरण, अक्सर ये होता है जब घर में इस बात का फैसला किया जाता है कि एक पालतू कुत्ता लेकर आना है, तो बिना सोचे समझे, चाहे हम कहें कि जितनी इजाजत हमें अपनी जेब देती है, या फिर ये कहें कि जो चलन होता है वो हम ले आते हैं, अगर घर में किसी पालतू कुत्ते को लेकर आना है तो किन बातों का ख्याल रखा जाए?
2: ये बहुत जरूरी है कि हमें इमोशंस में आके किसी भी पेट को घर में नहीं लाना। घर में एक पेट लाना उसी तरह है कि जैसे हमारे घर में एक नया बच्चा आ रहा है, और ये बच्चा ऐसा बच्चा है जो कि कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, उसकी जरूरतें बदलेंगी, और क्या हमारे पास इतना वक्त है? जेब तो हम देख ही लेंगे कि मुझे ये ब्रीड का डॉग इतने में मिल रहा है, फिर उसका साइज क्या है, कितना मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो ये सारे चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर कब कब उन्हें वैक्सीनेशन देनी है, क्या देना है, और डॉग्स क्या करते हैं, अपने को परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो अपने को हायरार्की के अंदर एड ऑन कर लेंगे, तो आप क्या उनको वो प्लेस दे रहे हो, या आप बस उनको एक भार बांध दिया और उसको वो इमोशंस उसके बहुत हैं पर उसको वो नहीं हो रहा, तो वो एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो लोगों को काटने लगता है। हमारे पास ज्यादा केसेस पेट के प्रॉब्लमेटिक है बजाय के बाहर के स्ट्रे डॉग्स के, तो एक बहुत बड़ा दायित्व है उस बंदे का जो कि ये फैसला ले रहा है कि वो घर में पेट ला रहा है, 10 दिन रखा छोड़ दिया, अरे वो जो बच्चा है जिसको 10 दिन आपने रखा उसकी तो साइकोलॉजी बिगड़ गई, वो आगे किसके घर रहेगा, वो अपने आप को नॉर्मल पाएगा ही नहीं, तो उन लोगों को भी दिक्कत होगी उसकी साइकोलॉजी।

0: साइकोलॉजी समझने में, तो हर डॉग की एक साइकोलॉजी होती है और हमें उसको समझना है और उसको वही केयर देनी है जो हम एक अपने घर के बच्चे को दे रहे हैं। उस अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें पेट नहीं रखना चाहिए, तो अपने बाहर वाले जो डॉग्स हैं उनको पेट वाला दुलार दें और उन्हीं को सेमी पेट टाइप की लेवल पे आप रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि जब हम डॉग लेके आते हैं तो यूजली बच्चों का डिसीजन होता है ये। पेरेंट्स इतना नहीं चाहते कि कुत्ता रखें, या वो छोटे बच्चे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आज पग है, आज हस्की है, आज ये है, न्यू न्यू ब्रीड्स हैं, तो हम घर लेके आते हैं। अब बच्चों का क्या है, वो पढ़ने चले जाएंगे 3-4 साल में, तो पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं। फिर अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हस्की है, अगर हस्की आप साइबेरियन डॉग है, आप उसे 48 डिग्री में बाहर बांधेंगे तो वो काटेगा ही काटेगा। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो हम पेट लेके आ रहे हैं, मैं अगर घर नहीं हूं तो कौन उसका ध्यान रखेगा? मम्मी को पसंद नहीं है, पापा को पसंद नहीं है, तो आप मत लाइए। तो ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा अगर आप सच में जानवरों से प्यार करते हैं। अगर सिर्फ एक दिखावा ही करना है तो फिर हम उसका तो कोई जवाब है ही नहीं
1: बिल्कुल
2: फिर।
1: बिल्कुल।
2: हाँ
1: तो
2: जी,
1: मैंने याद रखना होगा कि जिस प्रकार आपके घर में, अगर आप अपने घर में एक बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, अच्छा फर्नीचर लेके आते हैं, बड़ा टीवी या बड़ा फ्रिज लाते हैं, ऐसा ये फॉर्मूला हमारे पालतू जानवरों पर लागू नहीं होता। पालतू जानवर जीव हैं, उनमें जान है, उन्हें सर्दी गर्मी, उनमें भावनाएं भी होती हैं। तो हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि जिस प्रकार हम अपने घर में आने वाले मेहमान के आने से पहले उसकी तैयारी करते हैं, ठीक इसी प्रकार तैयारी हमें अपने पालतू जानवर को लाने से पहले करनी है। और साथ ही साथ, जैसा कि कनिका जी ने और किरण जी ने कहा कि पिटबुल या फिर जर्मन शेफर्ड जैसे जो डॉग होते हैं, ये बने हैं चौकीदारी के लिए, जिन्हें खुले खेतों में और खुले बाड़ों में रखा जाता है। उन्हें अगर लाकर हम छोटे छोटे बंद कमरों में रख देंगे तो उनका व्यवहार में हिंसा आना लाजमी ही बन पड़ता है। डॉक्टर किरण, क्या गलतियां अक्सर हम कर बैठते हैं कि हमारा पालतू जानवर, जैसा आपने बताया कि लगभग 2% ही जो कहते हैं कि कुत्ते के काटने के केसेस हैं वो आवारा गली के कुत्तों के होते हैं, बाकी अधिकतर कुत्ता का जिसे जो काटता है वो पालतू कुत्ता होता है। तो मतलब हमारे व्यवहार में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं। क्या करना चाहिए अगर आप घर में पालतू कुत्ता रख रहे हैं तो?
0: ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इसमें ये कहूंगी कि हम पालतू कुत्ता रख रहे हैं तो हमें उसको पूरा टाइम देना है, एक्सरसाइज 2 टाइम देनी है, उसको फूड का उसका स्केड्यूल है, उसके और वैक्सीनेशन है, और आपको उसको हायरार्की में प्लेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो ही इमोशंस हैं जो एक 1.5 से 2 साल के बच्चे की है, उनका माइंड इतना डेवलप्ड है, तो उसके हिसाब से आपको पूरा, अगर आप वक्त नहीं दे पा रहे, उनकी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, उतना प्यार नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उसके टेम्परामेंट में इफेक्ट आ जाएगा। जैसे आपने कुछ ब्रीड्स बताई हैं, वो ब्रीड्स बहुत हाइपर सेंसिटिव है, जैसे जर्मन शेफर्ड, उसको आपने कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा साइकोलॉजी उसकी डिस्टर्ब हो गई तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनको बहुत एक्सरसाइजेस दो। मैं ये नहीं कहती कि आप ना पालो, क्योंकि मैंने खुद रखा हुआ है जर्मन शेफर्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे पास आया जैसे, तो पर ये है कि हमें उसको बहुत रनिंग एक्सरसाइज, ताकि उसकी जो वो पेंट अप एनर्जी है वो सारी की सारी हम लोग उसका ध्यान रख सकें कि इतनी एनर्जी उसकी स्टोर्ड अप ना हो, कि ताकि वो नेगेटिव काटना शुरू कर दे लाइक दैट।
1: बिल्कुल। तो बहनों, कार्यक्रम नारी मंच में आप सुन रहे हैं कि पालतू और सड़क में घूमने वाले आवारा कुत्तों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इनका सामना करने के लिए हम अपने व्यवहार में क्या क्या किस किस्म के बदलाव लेके आए। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन जब जानवर और कुत्तों के प्यार की बात होती है तो बरसों पहले सुना एक गीत याद आता है और वही गीत हम आपको सुनाते हैं। ये गीत लिया है बहनों हमने फिल्म तेरी मेहरबानियां से। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हमारी बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर किरण सिंह से और साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के रूप में कनिका परूथी जी। और बहनों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम का नाम है नारी मंच। तो डॉक्टर किरण ने जैसा कि जिक्र किया कि अगर आप एक पालतू कुत्ते को अपने घर में लेके आ रहे हैं तो किस किस्म की गलतियां ना करें। कनिका जी, जब कुत्तों को घर में रखा जाता है तो बात आती है उनके वैक्सीनेशन की, कि किस तरह से उनका टीकाकरण कराया जाए कि वो परिवार के लिए भी किसी किस्म का खतरा ना बने और उनकी सेहत भी सलामत रहे।
1: इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारा जो भी वेटनरी डॉक्टर है, जैसे HAU में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, तो वो प्रॉपर टाइम टू टाइम वहाँ विजिट करके हम उनका एक कार्ड बनाएंगे। जैसे सबसे पहले शुरू में हमारा जो 7 मेन डिजीजेस हैं उससे रिलेटेड वैक्सीन लगता है, और वो वैक्सीन की बूस्टर डोज हर 1.5 महीने के बाद रिपीट होती है। और ये लगाने से पहले डॉग को डीवॉर्म किया जाता है, और रेबीज़ के भी 4th मंथ पे, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के गैप के बाद दोबारा से एक और डोज लगेगी, फिर ईयरली डोज लगेगी। तो इस तरह से ये तो है कि अगर हम उनको ये सब टीकाकरण कर रहे हैं रेबीज़ का और जो और सारे मेन डिजीज़ का एक ग्रुप रहता है जो डॉग्स को अक्सर बहुत एक तरह के फैटल हो जाते हैं, तो वो सब लगा के हम उनको महफूज रख सकते हैं। और फिर कोई ऐसा जो केस भी हो घर में हो या बाहर हो तो उसका भी इतना खतरा रेबीज़ का नहीं रहता। फिर उसके बाद हम सिर्फ 2 ही डोज लगा के, और क्योंकि ये बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ है रेबीज़, तो उससे बचा जा सकता है। और इसमें वही है कि एक प्रॉपर ग्रूमिंग और एहतियात तो जरूरी है ही। रश्मि जी,
0: बिल्कुल। तो कनिका जी, आप क्योंकि 20 सालों से जुड़ी हैं, जानवरों के कल्याण से जुड़ी हैं आप, तो आप क्या कहेंगी कि एक पालतू जानवर को जब एक घर में लेके आ रहे हैं तो परिवार की किस किस्म की जिम्मेदारियां बन पड़ती हैं?
2: देखिए, जिम्मेदारियां तो वैसे ही होती हैं जैसे एक बच्चे को बड़ा करने में होती है। बस इसमें ये है कि ये बच्चा कभी बड़ा नहीं होने वाला है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। कि जैसे अब जो न्यू एज साइकोलॉजी है, डॉग साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि आप डॉग को बच्चे की तरह ट्रीट मत करिए, डॉग को डॉग की तरह ट्रीट करिए। जो डॉग्स हैं वो एक एनर्जी को समझते हैं, तो जितनी आपकी काम एक शांति वाली एनर्जी होगी, अगर आप उसी तरीके से उस तरह से उसके पास जाते तो वैसे ही वो बिहेव करेगा। अगर आप आक्रामक होके या वॉयलेंस होके तब आप जाएंगे तो वैसे ही उल्टा बिहेव, मतलब जो डॉग है वो आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बड़ी अच्छी साइंस है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हमारे आसपास घूम रहे हैं ये हमारे सोशल उसको भी बताते हैं कि हमारा टोटली एक कैसा बिहेवियर पैटर्न बन रहा है, हम एग्रेसिव हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं डॉग्स एग्रेसिव हो रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सही,
2: हाँ जी
0: सही कहा आपने कि जो जानवर हैं वो तो वैसे की वैसे ही हैं, ना तो वो तकनीक से इतने ज्यादा दोस्ती कर पाए हैं, ना उन्होंने अपने व्यवहार में बहुत बदलाव किया है। जो बदलाव आया है वो हम इंसानों की फितरत में आया है। कहने की बात साफ है कि जानवर तो वही है जो बरसों पहले होते थे, लेकिन अखबार की सुर्खियों में अगर उनके द्वारा हिंसक हमलों की खबरें बढ़ रही हैं तो बदलना होगा हम इंसानों।
1: रश्मि जी, इसमें मैं थोड़ा और एड ऑन करूंगी, बहुत जरूरी बात है कि जो हमारे डॉग्स हैं उनके ईयर्स हमसे 20 टाइम्स एक्स्ट्रा सुन पा रहे हैं, वो एनर्जीज ले पा रहे हैं। आप विश्वास करेंगे कि जब मेरी माता जी का देहांत हुआ तो 12 घंटे पहले मेरे डॉग को घर में पता चल चुका था, मतलब वो टाइम से पहले ही वो एनर्जी को लेके और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है।

0: कोई सांप आया, कुछ आया तो मेरे एरिया में नहीं आ पाया क्योंकि वो डॉग्स ने उनको कंट्रोल करा। वो और भी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अनएक्सप्लेन्ड, उनके बारे में हमें बता देते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए, बीच में पता चला कि मेरी एरिया में बहुत चोरियां हुई, फिर बाद में पुलिस ने बताया कि वो चोर का कुछ उन्होंने ट्रैक करा, तो देख उनको ये बात पता चली कि वो डॉग्स की वजह से ज्यादा आगे आ ही नहीं पाए रात को, जो उनका प्लान था चोरी का और उसका। तो बहुत सारे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और मैं ये कहूंगी कि साइकेट्रिस्ट की और इतनी आजकल दिक्कत हो रही है, हर दूसरा बंदे को डिप्रेशन है, एनजाइटी है। अगर ये एनिमल्स और डॉग्स के साथ रहते हैं, मैं कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है। तो ये हमारी एक बहुत वेलफेयर के लिए है। और ओल्ड एज में यूएसए और दूसरे कंट्रीज में मेरा विजिट हुआ तो सर्विस डॉग्स हैं, तो वो तो स्पेशल ही एक बहुत बड़ी उनके पास काम करने वाले डॉग्स हैं। उनके बिना तो वो सर्वाइवल ही नहीं है। वो जो बुजुर्ग हैं घर में अकेले हैं, उनको लेके जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। और वो लेडी बहुत बेचारी क्रिपल टाइप हो गई ओल्ड एज में, तो वो स्विमिंग कर रही है तो उसके साथ साथ डॉग घूम रहा है, उसको इतना ध्यान रख रहा है।
1: मतलब डॉक्टर किरण के कहने का ये है कि अगर आप तनाव का शिकार हो गए हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है, आप चिड़चिड़ेपन के शिकार होते जा रहे हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो साझेदार बना लीजिए अपने पालतू जानवर को। और इसी के साथ में कनिका जी, एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात हुई जिसपे खासी विवाद भी हुआ, लेकिन हमें सही कहें तो उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। क्या है वो निर्णय?
2: देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जो लास्ट में आया है अभी रिसेंटली, उनमें उन्होंने यही बोला है कि हम एबीसी को कंटिन्यू करेंगे। एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, कि नसबंदी ही कुत्तों का एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन मारना काटना नहीं होगा, उसका सोल्यूशन पॉपुलेशन मैनेजमेंट ही होगा। कि अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है तो जनसंख्या को ही घटाना सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप आज यहाँ से कुत्तों को कहीं और छोड़ोगे, दूसरे कुत्ते आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। तो हम वही बात है, मतलब मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि मुद्दा डॉग्स का नहीं है, मुद्दा ये है कि आजकल एआई की दुनिया में, मेडिकल एनहांसमेंट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, अगर हम ये छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है कि हम आज किस स्टेज पे खड़े हैं, कि हम एक ये डॉग्स के मुद्दे को भी नहीं हम ठीक से डील कर पा रहे। और सिर्फ अगर जो ये एनजीओज हैं और ये जो नगर निगम की संस्थाएं हैं, ये एबीसी को ढंग से चलाएं, मैं आपको कहती हूँ कि 2 साल भी ये ढंग से चलाएं, तो ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। भूटान जैसी छोटी कंट्री ने भी इसको अपने एंड पे सॉल्व कर लिया है, तो भारत तो कर ही सकता
1: बिल्कुल
2: है। हाँ
1: बिल्कुल।
2: जी,
1: कनिका जी, एक बारी फिर से थोड़ा विस्तार से बताएंगे, एबीसी है क्या?
2: एबीसी का मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें हम दोनों को, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की, मेल्स की नसबंदी करी जाती है और फीमेल्स का दूसरा प्रोसेस होता है,
1: बिल्कुल
2: कई बार यूटरस निकालते हैं या वो करते हैं उससे। दूसरा चीज, कुछ गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पकड़ के कर देगा। जो संस्था उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डॉग्स को कैच करेगी, फिर उसकी नसबंदी करेगी, फिर उनको वहां पे अच्छे से रखा जाएगा
1: रेबीज।
2: 4-5 दिन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी वहीं पे लगेगी, फिर केयर करने के बाद उनको वापस अपनी लोकैलिटी में ही छोड़ना है। तो मेन जो ये है, इन केस ऑफ रेबीज, रेबीज का कोई डॉग है तो उसको उन्होंने बोला है कि हम यूथेनाइज कर सकते हैं। तो
1: बिल्कुल
2: मेन जो क्रक्स है वो ये है, हम कोई रीलोकेशन या जो आजकल एक फैला हुआ है अखबारों में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई किसी भी, जैसे ये RWAs हैं और ये सब है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ करने की। तो एक पैनिक नहीं क्रिएट करना, बस हमें शांति से एबीसी प्रोग्राम को चलने देना
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर किरण, अभी जैसे कनिका जी ने जिक्र किया कि कुत्तों की एक सामान्य समस्या, एक बीमारी है जिससे इंसान को खतरा लगता है, वो रेबीज है। क्या लक्षण होते हैं रेबीज होने पर, और कैसे बचा जा सकता है अगर मान लीजिए किसी कुत्ते ने इंसान को काट लिया है या पंजा लगा दिया है?
0: इसमें तो बहुत ये है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। रेबीज में जैसे ही डॉग का बिहेवियर बदल रहा है, वो रेस्टलेस है, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है कि वो खाना पीना छोड़ देगा, जो आसपास वालों का पता है। अगर कहीं हम बाहर एरिया में गए और वहां डॉग ने काट लिया, तो इमीडिएटली उस वॉन्ड को हमें साबुन से क्लीन करना चाहिए, उसको धोना चाहिए और फिर एकदम अपने क्लिनिक में या डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये आप इंजेक्शंस लगेंगे

0: प्रॉपर कोर्स रहता है 6 इंजेक्शंस का, और अगर वो रेबीज वाला है, अगर दूसरा डॉग है तो वो 3 या 4 जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि डॉक्टर या वो जो इंडिविजुअल है उसको पता नहीं चलता कि ये डॉग भाई हेल्दी है या ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिस्क्राइब करेंगे. पर उसको डॉग को देख के उसका बिहेवियरल इशू और जो मुंह से लार वगैरह गिर रही है तो हमें पता चल सकता है कि ये डॉग इन्फेक्टेड है रेबीज का.
1: मतलब डॉक्टर किरण का कहने का ये है कि अगर आपको पालतू या आवारा कुत्ता पंजा लगाते काट ले तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कनिका जी, अक्सर देखा जाता है कि जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं उन पे भी हम अपना लाड़ प्यार बरसाते हैं, और खास तौर पे तब ज्यादा हो जाता है जब कोई व्रत त्योहार आते हैं, पर्व उत्सव बनाते हैं, तो पूरी पकौड़ी खिलाने में भी हम परहेज नहीं करते। संदेश स्वरूप क्या कहना चाहेंगे हमारी बहनों को चलते चलते कि धार्मिक आस्था, मान्यताओं और गली के कुत्तों को कैसे सामंजस्य के साथ बिठा कर चलें?
2: देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमने देखा है कि फेस्टिवल्स में, जैसे आपने पॉइंट कवर नहीं किया, बट जैसे दिवाली आई तो वो पटाखे बांधना पूंछ के साथ, ठीक है, और मिठाइयाँ खिलाना, और हम आवाज़ से वो जैसे 40 गुना हमसे ज़्यादा सुनते हैं, तो वो आवाज़ से ऑलरेडी डर रहे हैं, तो वो पहले ही पैनिक में है इतना ज़्यादा. तो वो काटे, जब आप पैनिक में हो, डरे हुए हो और आपको कोई हाथ लगाए तो कोई काट भी सकता है, ठीक है. दूसरी चीज़, जैसे नवरात्रे आए, श्राद्ध आए, कुछ भी आए, हम गायों को पूड़ी, छोले, हलवा, पता नहीं क्या क्या खिला सकते हैं. हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमें पता है कि सच में कितनी गायें मरती हैं उन दिनों, गायों के पेट फूल जाते हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, जो उनके रेस्क्यूअर्स हैं, कितना ज़्यादा उनको उन दिनों, मतलब कॉल पे कॉल आ रही होती है. और डॉग्स के लिए हम उन्हें, हमें अक्सर देखती हूँ कि चलो 1 महीना पुरानी कोई फ्रिज में मिठाई पड़ी है तो बाहर रख दो, गाय को दे दो, कुत्ते को फेंक दो, ओके, कोई जल गया है, सड़ गया है, कुत्ते को दे दो. तो ये हम हिंदू होने की बात करते हैं, तो ये हमारे आ, आ, उसमें नहीं है.
1: मतलब ये है
2: हाँ
1: कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से जुड़े हों, अपनी धार्मिक मान्यताओं को जरूर निभाइए, लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेजुबान जानवर हमारे आसपास हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो

0: इसी के साथ हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com। और अब कार्यक्रम नारी मंच में अपनी रेडियो सखी रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स पप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
3: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा।
1: वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी बाल सभा का। आपकी बाल सभा में हम करते हैं आपका स्वागत तालियों के साथ। आज की बाल सभा में हमारे साथ आ पहुंचे हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना हांसी के बच्चे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि नर्सरी कक्षा के बच्चे भी आ पहुंचे हैं बाल सभा में। आज से बरसों पहले बच्चों, जब किसी बड़े इंसान को भी कहा जाता था कि माइक के आगे आपको अपने मन की बातें रखनी है, कविता सुनानी है, भाषण देना है, तो उनके भी पसीने छूट जाते थे। और देखिए ना, आप बच्चे अपने बड़ों से कितना आगे निकल चुके हैं कि छोटे छोटे नर्सरी क्लास के एक नहीं चार पांच बच्चे मेरे सामने बैठे हैं बाल सभा में अपने भागीदारी निभाने के लिए। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज के बाल सभा की शुरुआत कर रहे हैं कक्षा तीसरी के नकुल से। नकुल सुना रहे हैं कविता गर्मी आई।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम नकुल है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गर्मियों के बारे में एक कविता सुनाना चाहता हूँ। गर्मी आई पंखे कूलर कुल्फी लाई, सूरज दादा लगे भड़कने, धूप करारी लगी कड़कने, बरगद की छाया मन बाई। गर्मी आई सूनी सड़के सूनी गलिया, बंदरवाजे खुली खिड़किया, बाहर जाना ही आफत है, घर के अंदर कुछ रात है, बिन बिजली सासे घबराई। गर्मी आई धन्यवाद।
1: तो बच्चों बजा दीजिए नकुल के लिए तालियां। और नकुल के बाद अब बारी है नन्हे से हर्ष की। हर्ष कक्षा नर्सरी से हैं, थोड़े से शैतान हैं, थोड़े से समझदार हैं और बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बाल सभा में सबसे जो एक्टिव, सबसे सक्रिय भागीदारी निभाने पहुंचे हैं वो हर्ष ही हैं। तो हर्ष से सुनते हैं उसकी कहानी, एक कौवा प्यासा था।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है, आपको एक पोएम सुनाऊंगा। बहुत तेज गर्मी थी, एक कौवा बहुत प्यासा था, उसे इधर उधर पानी नजने आ रहा था। फिर वो एक बगीचे में गया, उसे दूर दूर गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे दूर एक पानी दिखाई दिया, फिर वो उसके पास गया, गड्ढे में पानी थोड़ा था। फिर कौवे की चोंच अंदर नहीं जा सकती थी, कौवे ने दिमाग लगाया, कौवे ने फिर उसमें छोटा छोटा उसने पत्थर डाला, पानी ऊपर आया, कौवा ने पानी प्यार मजे से उड़ गया। धन्यवाद।
1: वाह जी वाह। अपनी तोतली सी प्यारी प्यारी आवाज में जो कहा

0: कहानी सुनाई हर्ष ने कि किस प्रकार किसी समस्या का अगर आपको सामना करना है तो बस थोड़ी सी तरकीब लगानी होती है, कुछ जुगाड़ करना होता है और फिर हर समस्या से आप पार पा सकते हैं। अब सुनेंगे कक्षा 3 के चिराग से कविता, सर्दी बीती गर्मी आई।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मैं 3 कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको गर्मी के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ। सर्दी बीते गर्मी आई, कितने मौज मजे ले आई। अब मिलेंगे आम रसीले, जामुन होंगे काले नीले, पापा लाएंगे अब खीरे, तरबूज ककड़ी और खरबूजे, खूब खाएंगे बर्फ मलाई। सर्दी बीते गर्मी आई। धन्यवाद।
0: क्या बात है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, चिराग ने बताया और बहुत से बच्चे बता भी रहे हैं कि गर्मी आ चुकी है। गर्मी के अपने अलग मजे होते हैं जिसका हम सब इंतजार करते हैं। और अगर ये हमारे मौसम इंसानों की तरह बातचीत कर पाते तो वो क्या बातचीत करते हैं, आइए सुनते हैं। आशीष और हैरी से, ये कक्षा 5 से संबंधित हैं, ये बता रहे हैं कि अगर गर्मी और सर्दी के मौसम बातचीत करते तो वो कैसे होते।
2: नमस्कार, मेरा नाम आशीष है।
3: मेरा नाम हैरी है।
2: हम आज आपको गर्मी और सर्दी के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं।
3: अरे गर्मी बहन, इस बार तो तुमने सबके पसीने ही छुड़ा दिए हैं।
2: सर्दी बहन, इस बार तो तुमने भी लोगों को ठंड में बहुत मारा है। लोगों का रजाई में से निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है।
3: हाँ वो तो है, लोग ठंड में रजाई में रहते हैं, पर तुम तो ना घर में रहने देती हो ना बाहर, सबको पसीने से बुरा हाल हो जाता है।
2: सर्दी बहन, ऐसा नहीं है, लोग गर्मियों में एसी कूलर पंखा चलाकर घर में आराम करते हैं।
3: पर उसमें तो खर्चा बढ़ जाता है। जब मैं आती हूँ तो लोग स्वेटर पहनकर धूप का मजा लेते हैं।
2: सर्दी बहन, तुम्हारे आने पर तो बिल भी बढ़ जाता है, गीजर और हीटर चलते हैं।
3: लेकिन खाने पीने का मजा तो मेरे ही मौसम में है, जैसे गाजर का हलवा, गूंद के लड्डू।
2: सर्दी बहन, मेरे मौसम में तो आइसक्रीम, आम, तरबूज का मजा लेते हैं और गर्मी की छुट्टियों का भी मजा लेते हैं।
3: अरे गर्मी बहन, दोनों मौसम में अपने अपने फायदे नुकसान है। जैसे गर्मी में कूलर के चिपकने के बहाने बनाते हैं लोग, ठंड में नहाने के बहाने बनाते हैं लोग।
2: धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
0: कितने अच्छे से बताया ना कि अगर मौसम हम इंसानों की तरह बातचीत कर पाते तो गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम कैसे बातचीत करते। और अब सुनते हैं वंशु जो कक्षा 2 से हैं, उनसे उनकी कविता।
4: नमस्कार, मेरा नाम दक्ष है। हम आपको एक कहानी सुनाना। गर्मी

0: उठाएगी। थैंक यू,
1: और देखिए ना, छोटी से वंशु ने बताया कि किस प्रकार गर्मी की छुट्टियों का इंतजार आप सब बच्चे करते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां देती हैं मौका बुआ, चाची, दादी, मासी, मामा, हमारे सब उन खूबसूरत रिश्तों से मिलने का जिनसे हम किसी कारण, स्कूल के कारण या फिर छुट्टियां नहीं होने के कारण मिल नहीं पाते। और अब वंशु के बाद हम रुक कर रहे हैं कार्तिक की ओर। कार्तिक कक्षा चौथी से है, सुना रहे हैं कविता जब गर्मी के दिन आते हैं।
0: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंशु है, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: जब गर्मी के दिन आते हैं तो क्या होता है वंशु?
0: गर्मी आई लाने आम, घर से निकले बुदूरा, नहीं लिया हाथों में छाता, गर्म हो गया इनका, ये दौड़े घर को आए, पानी डाला, खूब नहाए, फिर वो बोले हे भगवान, अब मैं कैसे लाऊं आम। थैंक यू, आपका दिन अच्छा।
1: गर्मी का मौसम में आम का इंतजार तो सभी का होता है, और आम कितने अच्छे लगते हैं ये बताया हमें अभी वंशु ने। कार्तिक सुना रहे हैं कविता, आइए सुनते हैं कार्तिक की कविता।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपको गर्मी पर कविता सुनाना चाहता हूँ। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं, कहाँ खेलने जाए हम?

0: खेल का मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म, कहीं चैन न पाते हैं, मन ही मन झुंझलाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
1: कार्तिक के बाद अब बता रहे हैं देव, जो कक्षा 5वीं से हैं, कि क्या क्या फायदे होते हैं गर्मी की छुट्टियों के। आइए सुनते हैं देव को।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को गर्मी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। यह साल का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय में सभी स्कूल बंद रहते हैं। गर्मी की छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा आम, तरबूज, आइसक्रीम व नींबू पानी का खूब आनंद लेते हैं। गर्मी की छुट्टियों में कुछ बच्चे समर कैंप में भी जाते हैं। छुट्टियों में कुछ बच्चे अपने नाना नानी व बुआ के घर जाते हैं। छुट्टियों में हम घर बैठकर नए नए तरीके से खेलना सीखते हैं। मुझे इसका इंतजार रहता है। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप ज्यादा गर्मी में घर से बाहर कम निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और पक्षियों के लिए भी रखें। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
1: और अब हमारे सामने आ पहुंची है बारी काफी की, कक्षा 4वीं से हैं और सुना रही हैं कविता जून का महीना जब आए।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम काफी है, मैं आपको गर्मी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। जून का महीना जब आए, पसीना टप टप बहता जाए, दिन में मक्के शाम को मच्छर जिना फिर मुकसिल कर जाए, नदी तालाब जब सूखे जाए, पंछी प्यासा भटकता जाए, कहीं मिले पेड़ छाव की थोड़ा सा फिर रह पाए। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
1: और काफी के बाद अब सुनेंगे एक और कविता, गर्मी की छुट्टियां हैं, दिव्यांशु से, कक्षा 5वीं से हैं।
4: मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज आप सभी को एक गर्मी के बारे में कविता सुनाना चाहता हूँ। गर्मी की छुट्टियां है आई, बच्चों के मन

0: और दिव्यांशु के बाद अब कक्षा नर्सरी से फिर से हमारे सामने आ पहुंचे हैं प्यारे से हर्ष।
1: बहुत

0: हमको गोद उठाएगी। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
1: हर्ष, अगर आप शरारत करेंगे तो भी आप इतने प्यारे हैं कि ना तो आपकी मामी आपको मारेगी और ना ही आपकी नानी को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सभी का प्यार खुद खींच लेते हैं। हर्ष के बाद अब बारी है कक्षा पहली से अनुष्का की। अनुष्का की सुनते हैं ये कविता।
0: मेरा नाम अनुष्का है, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। गर्मी आई घर घर में ये पंखा लाए, पंखा सबको पास बुलाता, मीठी मीठी नींद सुलाता, मीठी मीठी हवा खिलाता, गर्मी को दूर भगाता पंखा। थैंक यू।
1: और अनुष्का के बाद अंशु से सुनेंगे उसकी कविता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज की बाल सभा में हमारे साथ नन्हे मेहमानों के रूप में शामिल हुए हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना हासी के बच्चे। और अब सुनते हैं अंशु की कविता। अंशु कक्षा पांचवी से हैं।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु है, मैं कक्षा पांचवी का छात्र हूँ। मैं आज सभी को कविता सुनाना चाहता हूँ। गर्मी के संग हो जाती है शुरू एक और कहानी, प्यासे लोग तरसते हैं, मिलता नहीं है पानी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि पानी नहीं मिलता है और पानी पीने की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमारे शरीर से पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है।
2: आओ मिलकर हम सब सबको बांटे ज्ञान, पानी की हर बूंद का हम सब करें सम्मान। बढ़ेंगे कदम बढ़ाने से, पानी बचेगा बचाने से, पानी की बूंद बूंद कम नहीं किसी खजाने से।
1: बिल्कुल सही कहा अंशु के लिए तालियां। और अंशु के बाद अब सुनते हैं कविता मनीषा से। मनीषा कक्षा छठी से हैं और उनकी कविता में वो हम सबसे सवाल कर रही हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही, होता कुछ ना काम क्यों।
3: नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गर्मी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। गर्मी इतनी पड़ रही है, होता न कुछ काम, एसी कूलर पंखे सब हो रहे हैं नाकाम, सब हो रहे हैं नाकाम। हमें ये मुंह चिढ़ाए, बिजली वाले ही देखो मौज मनाए। धरती पर है बढ़ रहा देखो इतना ताप, दोपहर जो घर से निकले बन जाए भाप, बन जाए भाप। जो बिन छतरी के जाए आम बेल लस्सी के संग मौज मनाए। पसीने से है तर हुआ गला रहा सूख, हाय हाय कर रहे लगती नहीं भूख, लगती नहीं भूख और मच्छर बिस्ताए। दरखत नीचे खाट बिछा चलो मौज मनाए। इंद्रदेव नाराज हैं मानसून अभी है दूर, प्रदूषण बन गया धरती का दस्तूर, धरती का दस्तूर। होश में अब तो आए पर्यावरण संरक्षण संदेश संग मौज मनाए। धन्यवाद।
1: और मनीषा के बाद आइए सुनते हैं एक और कविता कक्षा छठी की वर्णिका से। तन तपता है मन तपता है।
4: नमस्कार, मेरा नाम वर्णिका है, मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को गर्मी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। तन तपता है मन तपता है, धरती और गगन तपता है, झुलसा देने वाली गर्मी से हाय नदी वन ये तपता है। चेहरे को धूप सुखाती है और प्यास गले सुखाती है, तड़प रहे हैं पशु और पक्षी जब जब भी ये गर्मी आती है। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।
1: और वर्णिका के बाद अब सुनते हैं एक और कविता एकता से। एकता कक्षा छठी से हैं।
5: नमस्कार, मेरा नाम एकता है, मैं कक्षा छठी की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय
1: माध्यमिक विद्यालय धमाना है।
5: मैं आप सभी को गर्मी पर कविता सुनाना चाहती हूँ। गर्मी आई तपता सूरज आया, सबके चेहरे पर पसीना छाया, पंखे चले फिर भी चैन न आए, एसी केबिन कोई नींद न पाए, धूप में निकले तो जल जाए, तन छाव ही अब लगती है जीवन का धन, ठंडे पानी की सबको प्यास लगे, आइसक्रीम देखो हर दिल भागे, अब होगी बारिश सबको है इंतजार, गर्मी से राहत दे बस ये उपकार। धन्यवाद।

0: और अब सुनेंगे बात लक्षिका के दिल की, क्या कहना चाहती हैं कि गर्मी के मौसम के बारे में उनके क्या विचार हैं। आइए सुनते हैं लक्षिका को, कक्षा छठी से हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्षिका है। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाना में कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को गर्मी के विषय पर निबंध सुनाना चाहती हूँ। गर्मी के मौसम को ग्रीष्म कहते हैं। गर्मी के मौसम में तेज धूप तथा गर्म हवा चलती है। यह साल का सबसे गर्म मौसम होता है। इस समय स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इस मौसम में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। इस मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। इस मौसम में ठंडा पानी पीना और आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। इस मौसम में लीची, आम, तरबूज, नारियल पानी, स्ट्रॉबेरी आदि फल मिलते हैं। इस मौसम में लोग ठंडी जगहों पर घूमने जाते हैं। यह मौसम साल में एक बार आता है। धन्यवाद।
0: भाई लक्षिका, आपने गर्मी के मौसम के बारे में जो जानकारी दी वो तो बिल्कुल सही दी, लेकिन जब आपने कहा कि निबंध सुनाना चाहती हूँ तो आपको बता दे कि निबंध तो लिखा जाता है, ठीक है। और लक्षिका के बाद अब हम रुक कर रहे हैं अंकित की ओर। अंकित कक्षा 7वीं से हैं और बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु साल में क्या क्या अपने तेवर कैसे दिखाती है।
2: नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपको गर्मी के विषय पर निबंध सुनाना चाहता हूँ। ग्रीष्म ऋतु साल का सबसे गर्म मौसम होता है, जिसमें दिन के समय बाहर जाना काफी मुश्किल होता है। पृथ्वी अपने घूर्णन काल के दौरान जब सूर्य की ओर झुकती है तो गर्मी का मौसम आता है। मौसम गर्म होने के बावजूद बच्चे इसे सबसे अधिक पसंद करते हैं। यह गर्मी बच्चों की छुट्टियों का आनंद लेने और मस्ती करने का समय होता है। भारत में बहुत से स्थानों पर लोग पानी की कमी और सूखे की स्थिति से पीड़ित होते हैं। इस मौसम में कुएं, तालाब और नदियां सूख जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जिसे लू का नाम दिया गया है। इस दौरान हमें कई पसंदीदा फलों और फसलों की प्राप्ति होती है। इस मौसम में बहुत सी मृत्यु शरीर में पानी की कमी के कारण होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के कारण ही गर्मी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। धन्यवाद।
0: और अंकित की बात अब सुनते हैं साइना की कविता। साइना कक्षा 7वीं से हैं, सुना रही हैं कविता तपता सूरज जलती धरती।
3: नमस्कार, मेरा नाम साइना है। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको गर्मी के बारे में कविता सुनाना चाहती हूँ। तपता सूरज जलती धरती, गर्म हवा जोरों से चलती, गर्तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, रिम झिम बरसा पानी। गर्मी की तो खत्म कहानी, गर्मी का तो मौसम जब आया, सबको यह खूब सताया। सूरज चाचा भी आकर आसमान में आग बसाया, धूप चमकती जैसे अंगारे, पसीने में भीगे हैं सारे। धन्यवाद।
0: और साइना के बाद एक और कविता हमारे सामने लेकर आ रही है तन्वी कक्षा 8वीं से।
4: नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमाणा में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को गर्मी के विषय पर कविता सुनाना चाहती हूँ। गर्मी का जब मौसम आया, सबको इसने खूब सताया, सूरज चाचा ने भी आकर आसमान में आग लगाई, गर्मी से बेहाल हो जाए, पैदल जो भी चलकर आए, कूलर, एसी, पंखे, ऐसे में फिर चलते जाए। धन्यवाद।
0: और देखिए ना, गर्मी के मौसम, तपते सूरज की कहानी, कैसे हम सभी परेशान हैं और कितने बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार मेघों का, यानी जब काले काले बादल आसमान पर अपना डेरा डाल देंगे और तपती हुई धरती की प्यास बुझाने को जब आसमान से बूंदे जमीन पर पड़ेंगी, तभी इस गर्मी के मौसम से हमें ठंडक या आराम मिलेगा। और गर्मी के बाद सुनते हैं एक और बातचीत जो हमें सुना रही है रौनक और रितेश। और रौनक और रितेश क्या बातें करते हैं, आइए बच्चों आपको भी सुनवा देते हैं।
5: नमस्कार, मेरा नाम रौनक है।
6: मेरा नाम रितेश है।
5: हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय दमाना में कक्षा 8 के छात्र हैं। आज हम आपके सामने संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
7: अरे रौनक, क्या हाल है? आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना?
5: हाँ रितेश, बहुत ज्यादा। दोपहर में तो हालत खराब हो जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है।

0: सही में इस बार गर्मी ने तो हद ही कर दी। लगता है तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। धूप में मुझे तो चक्कर आने लगे हैं।
0: मुझे भी गर्मी की वजह से थकान भी बहुत जल्दी लगने लगती है। लगता है हमें कुछ उपाय करने होंगे।
1: हाँ, जैसे कि खूब पानी पीना, हल्के रंग कपड़े पहनना और कोशिश करना कि दोपहर में धूप में ना निकले।
0: और एसी या कूलर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा।
1: सही कहा, हमें अपने अपने घरों में भी गर्मी से बचने के इंतजाम करने चाहिए।
0: हाँ, जहाँ तक हो सके पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें छाया देते हैं और गर्मी कम करने में भी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। चलो आज से ही कुछ पेड़ लगाते हैं।
0: हाँ, यह एक बढ़िया विचार है। कम से कम हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे।
1: तो फिर चलो गर्मी से बचने के उपाय करते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बिल्कुल सही कहा रौनक और रितेश ने कि अगर आप चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए तापमान से मुक्ति मिल सके, या ये कह सके कि इस बढ़ते हुए तापमान से हमें आराम महसूस हो सके, तो उसमें पेड़ों को लगाना और पेड़ों को बचाना दोनों बेहद जरूरी है। जिस प्रकार हम तेज धूप से बचने के लिए कभी कभी छाते का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें धूप की तेजी कम महसूस हो सके, ठीक इसी प्रकार अगर हम धरती पर हरे भरे पेड़ों की चादर बिछाने में और उसे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा पाए, तो यकीन मानिए बढ़ती हुई गर्मी के तेवर तीखे करने में हम जरूर सफल हो पाएंगे। और इससे पहले कि आज की बाल सभा को हम पहुंचाएं उसकी समाप्ति की ओर, आइए सुनाते हैं आपको आप बच्चों का ये पसंदीदा गीत।

0: इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक और कविता देवांश की। देवांश सुना रहे हैं एक कविता।
1: अभी आप सुन रहे थे बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए,
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

0: जिस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया।
1: What, झुमका?
0: राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती है।

एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदनलाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते। एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त

असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने यह गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत कुमार ने गाया।

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थी और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका ये सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म इतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसकी डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का ये भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम गया।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

यहां से राजकोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राजकोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राजकोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राजकोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राजकोसला ने बनाई काला पानी।

निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और सीआईडी दोनों के हीरो देव ही थे।

0: काला पानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा बहुत।

1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

थे जब जानी मानी निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना, साल 1962।

0: बहुत शुक्रिया।
1: एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

के रूप में राजखोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राजखोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राजखोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी?

वो कौन थी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्य में साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अमीर देख लज्जा गले एक अचंबा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहर अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसा साहब की, राज खोसा साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: आंखें देवेंद्र गोयल,
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं थी कि आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून। उन्होंने कहा ठीक है सुना, जैसे उन्होंने फिर से सुनी मदन जी ने खुद गा के सुनाई, वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहां है। तो मनोज कुमार क्या मेरा दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं,
0: ओह गॉड,
1: मैंने इस ट्यून को मनन कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
0: जी
1: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया, मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कोई बात है। तो मैंने कहा, मदन भैया क्या बात है? तो मैं, कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नींद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब, मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्मी है जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब थे।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत।

0: इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवा जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।
1: ये

अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की तीन फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूं।

इस फिल्म के लिए सीमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील दत्त।

आशा पारेख के साथ राज खोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतुजी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी वो उन्हें एक विलक्षण निर्देश

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी साहिल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना सुनिए।

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे तो

दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई सनी

था। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया, इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजहूर सुल्तानपुरी, संगीत आर डी

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते

0: आप सुन रहे थे राजकोसला पर ये विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डम मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जहांगीर बेगम की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मिर्जा सुल्तानपुर के बोल थे मेरे जीवन साथी सोन का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनाऊं
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: जला को दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले।
1: आंखों का उजाले।

0: रेली?
1: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और महमूद रफी की आवाज में आपको गीत सुनाते हैं। फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोनू नेहवाल फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने मदन मोहन का सर्वाधिक गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण की बोल थी, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज थी, नवनियार आनंद बख्शी, मुसकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज मजनू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मनले की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आरती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाने हैं, शब्दों को भी पहचाने हैं जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा, वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो, तेरा हुस्न रहे आबाद। हाँ, एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ, तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है, ये देखने मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत भाग्य विधाता फिल्म को हरियाणा में कर मुक्त करने की घोषणा की है। कल शाम पंचकूला में अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले की एक घटना पर आधारित यह फिल्म बहुत प्रेरणादायी है। इस तरह की फिल्में मुसीबत के वक्त नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म बताती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल होगा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को ऐसी प्रेरणादायक फिल्म देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, विधायक सतपाल जांबा, रणधीर पनिहार और शक्ति रानी शर्मा सहित कई नेताओं ने भी यह फिल्म देखी। इसके अलावा हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा समेत कई अधिकारी भी फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस विशेष स्क्रीनिंग में शामिल रहीं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम HSIIDC के प्रबंध निदेशक को साहा औद्योगिक विकास केंद्र में तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी करने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आपात समय में तुरंत कार्रवाई की जा सके। श्री विज ने कल साहा औद्योगिक विकास केंद्र में ग्लासवेयर फैक्ट्री में लगी आग की घटना का जायजा लेने के उपरांत यह निर्देश दिए। उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में दमकल विभाग की कोई गाड़ी तैनात न होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में पानी भरने के लिए वहां पानी का बोर भी करवाया जाए। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि साहा औद्योगिक केंद्र में लगभग 300 यूनिट हैं और वहां काफी श्रमिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां दमकल विभाग का इंतजाम होना जरूरी है और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 21 जून को राज्य भर में पुनः आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी ना हो। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पीने के पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके। पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विभाग निगम ने अपने 3 प्रमुख होटलों, होटल माउंट व्यू, होटल शिवालिक व्यू तथा होटल पार्क व्यू में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का उपयोग शुरू कर दिया है। निगम के प्रवक्ता ने कहा कि PNG को अपनाना निगम की स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सतत शहरी विकास के लिए सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा की जेलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कल भी इस उपलक्ष्य में विभिन्न जेलों में आयोजित रक्तदान शिविरों में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कल विभिन्न जेलों से 525 यूनिट रक्तदान किया गया। फरीदाबाद निवासी एवं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम रामगढ़ के रहने वाले मनीष ठाकुर ने 12 से 14 जून तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2026 ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। हरियाणा के कारागार महानिदेशक आलोक मित्तल के मार्गदर्शन में पलवल जिला की कारागार एवं पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के संयुक्त तत्वाधान में तथा सरकारी रक्त बैंक के सहयोग से कल जिला कारागार परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में जेल कर्मियों एवं अन्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कारागार अंबाला द्वारा भी कल जिला रेडक्रॉस समिति अंबाला के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आपको वापिस लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।

सिंह और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओ कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवानी खास में स्थित शीश में ही देखे हैं गाइड ने, मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओ, बहुत सारे शीशे पहले महल में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे दौर हैं, नहीं एक और

यशोदा ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इतने ही आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ न बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे कुछ विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है। और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नजरों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नजरों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बतानी है इस गीत की और अगले गीत में भी आपको कलाकार बतानी है और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी ने मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोता, वो आपको कितने पसंद है और कहाँ से आप खरीदते हैं। जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी, वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है। एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हम लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम में कुछ गीत नई दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोता, और जरूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोता गण भी बेकरार है। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जगा रही है, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना ही मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है।

में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोता गण भी देख रहे हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही है, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईने सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईने में मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है।

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगल आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, और उसमें बहुत सारे शीशे जो है वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं, मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती है, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं, कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता

0: है कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो यही रहता है मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है वस्तु में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आजादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: गजरा लगा के गजरा सजा के

अपने देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी, नमन बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसे नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी उन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमी निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ, और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बहुत सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी उन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो है वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुनहरा सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुनीला सफर कार्यक्रम

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगी, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्ममंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों, यादों, इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने, मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो है कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी प

0: श्रोताओ, आपको कलाकार और संगीतकार बताने हैं।
1: आज मुझ पर जो तुम

नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमें से मोहब्बत हमें से लड़ाई।

0: पलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई।
1: ये हिंदी माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बरानी का लिखा नौशाद का संगीत था, और इसके पहले आपने सुना मेरी महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने एमएक्री ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत में आईने की बात है, आईना हर किसी के चेहरे की

बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रुकना मनाना अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं सामने लाता है आईना। कुछ गीत ने लिखा है, आईना वही रहता है चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओ, जिसे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक जमाना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है और ऐसा ही

राजीव पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश में ही जो आमिर का कला है श्रोताओं, उसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे।

एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का यूनिट आपने सुना नजर तमाम और धनंज भी उसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट है हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज है, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है, तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थी, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे, जहां बेल्जियम ग्लासेस है इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण

ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं। सजने संवरने के लिए शायद इसलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियां, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल हो।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुनीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक

0: अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहां गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।
1: ओ

0: की आपाधापी संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बच्चों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है, जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है। ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहीं दूर जब दिन

आज हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जो

0: है विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम

0: अतिथि पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल

0: उत्सव राजा आज पाहिली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ो पीठा, आरिसा पीठा, चकोड़ी पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: अहमान कहा अब तुम हो जवान मेरी जान लड़कपन छोड़ो
1: जब मेरी कुंडलियां पल पल की फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी
0: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो अहमान कहा अब तुम हो जवान मेरी जान लड़कपन छोड़ो।

0: मशहूर हो।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, झूमघट तो जरा ओढ़ो। मानो कहा अब तुम हो जवान, मेरी जान लड़कपन

बलमुआ आज तुम्हें लहरोगी।

0: सब घूंघट तो जरा तोड़ो होंठ, अरे मानो कहा अब तू हो जवा, मेरी जान धड़कन छोड़।
1: सचिन देव बर्मन की मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नैनों में भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम सिंह का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुना ढला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नवे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नवे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आज का इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोता, कहीं आपके पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गुजरात में लसन में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला मनवर विशाल और चेतन मनवर यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

पहिलाका युवकका मन जुफियाले त मंगेशकरका गायक आरडी बर्मनकी दर्शनी मजुन सुल्तान पुरी के बोल थे जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत उर्मिला अद्वंत नीलेश मयूरी कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया बीरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुरत नेहा जैन दीपक पैंक मुरत और चेतन नहाटा ने

जगत भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।

अच्छा धागी फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान कल का ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, मिजमा रियाज शमरीन प्रवीण और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जीवेंद्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओ आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर उनकी आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाही गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: नरक है। पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
1: उसका तर्क अनुचित है क्या?
0: तर्क तो केवल तर्क ही है गंधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के। उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
1: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हाथ न करें।
0: कोई लाभ नहीं होगा।
1: क्यों?
0: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते।
1: वो क्या कहते हैं?
0: वही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
1: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
0: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी। सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
1: क्या?
0: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ले।
1: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
0: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
1: फिर वही तुलना।
0: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम
1: कुंती के साथ मेरी बहन को छल नहीं
0: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी। जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया
1: महाराज।
0: हाँ गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूँ ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूँ गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज।

महाराज, दुर्मुख दुर्जय दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंदु

महारानी गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव, दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण ली।
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तुमने भी को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये हो रही थी।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भाप लिया और सिंह की भांति झपट कर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: गए। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का

0: तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
1: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
2: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
1: शांत हो राजमाता।
2: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आतनात सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
2: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
2: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर बधाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देखकर जिएंगे? माता,
1: मुझे क्षमा करो। माता,
2: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने मार किए कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
2: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते।

तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ, आप मुझे

0: या कुंती ने द्रौपदी ने?
1: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रुत होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
0: मैं समझ गया, ठीक है गंधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तो
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की, मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पाति तत्व न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना। और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं थी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हक नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है।

0: एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप
0: गुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अम्बा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? अपराधी में नहीं हमें महाराज।
0: कांधारी, देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध संबंध हो, अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीतों को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कांधारी, लगता है पास का रंग जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे जल?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ कांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी।

0: मन के सारे अभाव दूर हो गए। मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए। एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के स्वर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते
0: हैं। चलो, तावादल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नई अध्याय की प्रारंभ। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता

0: कभी था।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और

0: कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मिथुन प्रदीप। स्वागत है आपका मिथुन जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: मिथुन जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
1: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
0: वो तो बहुत पॉपुलर था।
1: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
0: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
1: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
0: अच्छा,
1: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
0: तो मिथुन जी आप कहिए तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
1: जरूर सुनवाइए।

0: नितिन जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा। हाँ
1: ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसे ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगे।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: बड़ी हो गई
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थी, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखी?
1: हाँ,
0: जी ने
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
0: हाँ,
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरत।
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: क्या बात,
1: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम थे।
0: हाँ,
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा प्यार
1: प्यार पसंद है। तो

0: सुंदर सुंदर से गीत है,
1: बहुत स्वीट,
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है,
0: हर मौके के रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे, और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: इतनी गहरी, तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसकी
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से
0: प्रवीण जी ने। ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने

0: उन्हें देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया। वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
1: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
0: जी,
1: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
0: जी।
1: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
0: किस बात पे?
1: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
0: जी।
1: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
0: जी,
1: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
0: क्या बात है,
1: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको, वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
0: जी।
1: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
0: जी।
1: वो भी ऑडियंस में थे
0: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
1: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
0: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
1: बहुत सुंदर गीत।

0: आजकल ये जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बू।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, काले नहीं, सफेद
0: सफेद। हाँ हाँ,
1: एनीवे वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जाने माने चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुली का आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, दो तीन साल की या चार साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी।

0: उनमें से मुझ में आया
1: जी
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ, फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
1: लक्ष्मी के, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी। हाँ,
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैंने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
1: जी जी,
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा।
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी,
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया, मकसद मिल गया। और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: बदल जाता है।

0: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊँ कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते
0: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है। वो तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना। वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, इतना सारा
0: है,
1: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
0: जी,
1: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
1: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
0: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है अपना आर्ट?
1: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
0: अच्छा जी,
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
0: जी जी जी,
1: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
0: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला तृति रहने दिया है।
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता

0: कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात
1: कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी

0: गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही है या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों के जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का सभी तरह के आप।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों के, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपना पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
0: बहुत सुंदर।

0: आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौए हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही
1: हैं? हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद है, तो हो जाता है सब।
0: जी जी जी, तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार के सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम।
1: हाँ, हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मित्र जी, आप कहिए तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर।

0: छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे जो।
1: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
2: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश है उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
1: जी।
2: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
1: जी,
2: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
1: जी। बहुत खूब बहुत शानदार मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
2: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
1: जी,
2: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाली उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की बातचीत बस यही तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
3: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
4: Charlie.

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनाऊं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से रिले किया जा रहा था, FM एंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो हिसार, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: श्रोताओं, हेलो हिसार में गीतों की बहार लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक।
1: हेलो, मैं

0: नमस्ते
1: नमस्ते। हेलो सर, में स्वागत है आपका। नाम बता दीजिए। कहाँ
0: जी, यश कुमार बात कर रहा हूँ मैं,
1: से बोल रहे हैं यश जी?
0: जामनगर गुजरात से मैं।
1: अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? अच्छा
0: जी यह तो मैं कंपनी में जॉब करते हैं मैं।
1: अच्छा पहली बार फोन किया आपने।
0: जी, मैं
1: जी, हमें लग रहा था। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हेलो हिसार, आकाशवाणी हिसार में आपका।
0: धन्यवाद मैम।
1: तो यश
0: जी,
1: यश जी, यहाँ के प्रोग्राम सुने हैं आपने कभी?
0: मैं हेलो
1: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज हेलो हिसार में?
0: जी, आज हमको सुनवा दीजिएगा मैम, बंजारन का कब आएगा मेरे बंजारे।
1: जी

0: हेलो, नमस्कार दीदी। कहना
1: नमस्कार, बहुत स्वागत हेलो हिसार में आपका। परिचय जान सकती हूँ आपका?
0: राम बात कर रहा हूँ, शास्त्री नगर हिसार से। मैं
1: जी, कैसे हैं आप और क्या काम काज करते हैं?
0: तो कुछ नहीं करता, मैं घर पे रहता हूँ।
1: अच्छा, तो घर पे कैसे आपका जो भी टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
0: बस मैं ब्लाइंड व्यक्ति हूँ जी।
1: अच्छा, तो गीत सुनना शौक है आपका, है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: किस तरह के गाने सुनते हैं, पुराने नए कौन से अच्छे लगते हैं?
0: मैं पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ।
1: आज बता दीजिए कौन सी फरमाइश है।
0: आप कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम रितु कौशिक है।
0: रितु कौशिक जी। अच्छा, कई दिन हो गए, आपकी आवाज पहचानने में भी नहीं आई आज तो
1: अच्छा,
0: मेरे को। दीदी मैं सुन रहा हूँ, फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। मैंने पहले भी कोशिश करी थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया।
1: कौन सा गीत है?
0: मुझको ठंड लग रही है, मुझे दूर तू ना जा।
1: गर्मी में ठंड लगने वाला गाना सुनेंगे आप?
0: हाँ, यहाँ तो
1: चलिए
0: ठंडा मौसम हो रहा है दीदी थोड़ा।
1: जी, ठीक है, भेज रहे हैं आपको ये गीत आपके पसंद पर, आप सुनिए और ऐसे ही कॉल किया कीजिए हमें।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है लोहिसार में। कौन बोल रहे हैं?
0: ठीक चंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रांसिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे?
0: मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
1: अच्छा अच्छा, तो कब से सुन रहे हैं रेडियो?
0: रेडियो तो मैडम आज लगभग 50 से 55 वर्ष हो गए।
1: क्या बात है, तो 50-55 साल से सुन रहे हैं आप। कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं आपको?
0: मैडम पहले तो ऐसा था कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते थे।
1: अच्छा,
0: और अभी जो है हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है
1: जी। तो पहले के दौर में और आज के टाइम में क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
0: मैडम पहले के दौर में ऐसा था कि ये सुनने के सीमित साधन थे
1: जी,
0: और आज के दौर में यह है कि हर हाथ में एक रेडियो है कहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आप ऐप के माध्यम से जो है मोबाइल के द्वारा और सारे मतलब जगह के कार्यक्रम में आप उसमें भाग ले सकते हैं, उनको सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये एक सुविधा हो गई है ये।
1: जी बताइए, आज हेलो हिसार में कौन सा गीत सुनने के लिए आपने कॉल किया है?
0: मुझे हिमालय की गोद का सुनवा दीजिएगा।
1: कौन सा गाना?
0: चांद सी महबूबा हो मेरी।
1: बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की आपने, भेज रहे हैं आपको।

0: जी हेलो सर से हम बात कर रहे हैं, आप बताइए नाम अपना।
1: कौशिक मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक
0: सिंह। अशोक सिंह जी, जी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं आप, है ना?
1: जी मैडम जी, हाँ सब अच्छा है। थोड़ी बारिश हुई थी मगर कम हुई, मगर धूप है तेज बढ़ रही।
0: जी जी जी बता दीजिए।
1: अंदर चल रहा है तो जो गर्मी का मजा ले रहे हैं और रिटायरमेंट का,
0: सही बात है, दोनों चीजों का
1: आनंद। सुनवा दीजिए,
0: बता दीजिए कौन सा सुनेंगे।
1: सरस्वती चंद्र के चूड़िया खन की खनकाने वाले आगे, लता जी की आवाज।
0: ठीक है अशोक सिंह जी, आपकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं हेलो हिसार में ये गीत, और ऐसे ही कॉल करते रहिएगा हमें।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नाम बताइए।
0: मैडम जी, चकला बाजार सुमाना शहर जिला पटियाला पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल जी।
1: जी पप्पू राजा जी, कैसे कैसे हैं आप? काम कैसे चल रहा है आपका?
0: मैडम जी बहुत अच्छे, आकाशवाणी हिसार के प्रोग्राम सुनते रहते हैं और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं जी।
1: चलिए ये अच्छी बात है। आप जब इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि आकाशवाणी हिसार के प्रोग्राम आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है।
0: हाँ जी
1: तो
0: मैडम जी,
1: पप्पू राजा जी, आज कौन सा गीत है जो सुनना चाह रहे हैं आप,
0: मैडम जी हमारे परिवार के कुछ नाम हो रहे हैं जी। हमारे
1: बताइए।
0: पापा जी हैं शेर परसोत्तम दास खुशदिल जी चकला बाजार समाना से, शंकर शंभू खुशदिल हसमुख लाल जिंदल, पप्पू अनमोल खुशदिल, और हमारी बहुत सुंदर पत्नी हैं संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाना जिला पटियाला पंजाब।
1: जी, हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं आप, ये बड़ी अच्छी
0: हाँ जी
1: बात
0: मैडम
1: है।
0: जी, बहुत अच्छी है जी, हमारा बहुत ख्याल रखती है जी।
1: जी। और एक ये खुशदिल जो आप लगाते हैं अपने नाम के आगे, क्या
0: हाँ
1: ये
0: मैडम जी, क्योंकि
1: उपनाम है या?
0: हाँ जी नाम ऐसे है मैडम जी, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है जी।
1: जी, इसलिए आपने नाम के आगे ही लगा रखा है।
0: हाँ जी मैडम जी,
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात ये हमें पता चली आज। तो पप्पू राजा जी, आप फरमाइश जान लें आपकी।
0: मैडम जी गाना आप

0: तो गाइड फिल्म का
1: कौन सा?
0: तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। मैडम
1: ठीक है, भेजें पप्पू राजा जी, आपकी फरमाइश अब तक।
0: जी, हम आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं जी।
1: धन्यवाद आप सभी का कि आप इतनी गंभीरता से और इतनी तन्मयता से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी, आपका भाई
1: मांगे लाल चंदेल जी। पहचान गए हम, थोड़ी देर लगी हमें।
0: पहचान लिया आपको।
1: और बताइए मांगे लाल जी, कैसे हैं आप? मौसम कैसा है उधर?
0: मौसम आज सुबह से ही बदल हुआ है, आसमान में काले काले बदल छाए हुए है और मौसम बढ़िया सुहावना हो रहा है। मतलब
1: जी बिल्कुल, और इस चुभती जलती गर्मी में तो सुहावना मौसम ही राहत देता है ना?
0: जी जी सही है बहन जी, भयंकर गर्मी जीत गई। अभी 4-5 रोज से तो ऐसी गर्मी पड़ रही थी भयंकर
1: जी,
0: और आज कुछ ऐसा लग रहा है मौसम बिल्कुल ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान में काली काली बदली है, बढ़िया सुहावना मौसम हो रहा है
1: जी। और मांगेलाल जी, मौसम का प्रभाव हम सब पर होता है। देखिए जैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल छाने लगते हैं, तो हमारा मन भी अंदर से खुश हो जाता है ना
0: जी।
1: बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: फिल्म संयोग का सुनवा दीजिए।
1: कौन सा गाना?
0: बदली से निकला है चांद, परदेसी पिया।
1: बहुत खूबसूरत गीत भेज रहे हैं आप तक मांगेलाल जी, सुनते रहिए ऐसे ही आकाशवाणी के साथ।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो हिसार में।
0: आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।

0: आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपका फोन लगा मैडम।
1: हमसे बात हो रही है आपकी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप?
0: मैं HCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में नौकरी करता हूँ। ड्यूटी पीरियड में कार्यक्रम में फोन करता हूँ। आज मैं दो चार दिन से नहीं जा पाया मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं मिल पाया था, तो एकदम वो थोड़ा सा वही परेशानी था।
1: अच्छा, पानी की किल्लत है उधर।
0: जी मैडम, आज थोड़ा सा वो शिकायत दिए हैं तो थोड़ा सा मिला है। अच्छा, कल परसों के बीच में सुधर जाएगा, क्योंकि नदी में पानी रहता है ना मैडम, तो पूर्वान में पानी कम रहता है तो पानी कम मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए थोड़ा सा बरसात आ जाएगा तो पानी अब लबालब मिलेगा।
1: जी जी जी बता दीजिए, आज के प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है सर, और गीत की बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सर। और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवार जन के रिश्तेदारों को, अपनी श्रेणियों को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों, स्टार कर्मचारियों को, पूरे भारत श्रोताओं को हेलो एट द रेडियो, हमारे ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को।

0: हेलो हिसार
1: बिल्कुल, हेलो हिसार से बात कर रहे हैं। आप बताइए कौन बोल रहे हैं।
0: जी। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: मैम मैं सज्जन कुमार जांगड़ा बात कर रहा हूँ, गांव नलोई से जी।
1: जी, आवाज तो पहचान गए थे आपकी, लेकिन रस्म है,
0: धन्यवाद।
1: नाम पूछना पड़ता है। और बताइए सज्जन जी, कैसे हैं आप।
0: बिल्कुल कुशल मंगल है रितु जी, और आशा करते हैं कि पूरा आकाशवाणी परिवार बहुत कुशल मंगल होगा।
1: जी बिल्कुल, सब बढ़िया है। और कैसे चल रहे हैं प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं लगातार, हमें पता है।
0: प्रोग्राम में बिल्कुल बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो संक्षेप में मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि 8 जून 1936 को जो एक पौधा लगाया था ऑल इंडिया रेडियो के नाम
1: जी
0: से,
1: जी
0: वो
1: जी
0: आज इतना बड़ा हो गया है कि 90 वर्ष अपने पूरे करने जा रहा है, हो गए
1: बिल्कुल
0: मतलब।
1: बिल्कुल हो गया है।
0: तो इतनी बड़ी खुशी की बात है कि देखो, एक छोटे से एक केंद्र से स्टार्ट होकर के आज लगभग 600 स्टेशन आकाशवाणी के देश पूरे देश में खुले हुए हैं,
1: जी
0: और इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम जो है हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बधाई खुशी सभी श्रोताओं को और पूरी आकाशवाणी की टीम को
1: जी,
0: मिलता है।
1: आप भी इन चीजों के पात्र हैं, हमारे जो श्रोता हैं बराबर का हिस्सा रखते हैं इस भागीदारी में, इस खुशी में। तो
0: आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हुए, इसके खुशी में देखो हर स्टेशन पे कहीं भी मैराथन का है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का इतना बढ़िया बढ़िया आयोजन चल
1: जी
0: ही रहा है।
1: बिल्कुल।
0: पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है। काफी जगह जगह श्रोताओं के से बातचीत होती है, बताते हैं कि

0: वहाँ पे था, वहाँ पे था, तो बहुत अच्छा है ये भी मैम।
1: बिल्कुल। तो सज्जन जी, आज के प्रोग्राम में गीत की फरमाइश आपकी।
0: मैम हम तो हमारी फरमाइशी तो देखो चलती रहती है, कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैं चाहूंगा आज आपकी पसंद का गाना सुने।
1: अच्छा चलिए, आज हम आपको अपनी पसंद का गाना भेज रहे हैं, और ऐसे ही सुनते रहिए और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए।

0: जो खबरें होती है राष्ट्रीय खबरें हैं वो तो हम जैसे कि दिल्ली से है या अदर स्टेशन से हमको पूरी मिलती है। जो क्षेत्रीय खबरें होती हैं वो उसका एक आकाशवाणी हिसार का जो एक प्रयास है नमस्ते हिसार के थ्रू इतना बढ़िया वो है कि कुछ कहें जो भी बोलेंगे कम ही रहेगा। एक छोटे से गांव की खबर भी हम तक आकाशवाणी हिसार से ही मिल रही है।
1: जी बहुत प्रयास रहता है हमारा कि हर तरह की चीजों को हम इसमें समावेश करें और जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा अमर सिंह सिहाग का। ऐसे ही आपके मनपसंद तराने लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इनका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को

संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार FM 102.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे साय 6:20 पर, और आज साय 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंघम इंग्लैंड से क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। साय 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज, और इसका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:45 से आप पुणे महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का सीधा प्रसारण सुन सकेंगे। क्रिकेट मैच का रिले भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, और रात्रि 9 बजे से आप पुणे T20 क्रिकेट विश्व कप मैच भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट विश्व कप मैच का प्रसारण आप सुन सकेंगे। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार।

आइए श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें। प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग, और कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर। कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। कल साय 5 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से ही कार्यक्रम एक कलाकार, कार्यक्रम भक्ति संगीत साय 6:20 पर, और युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग साय 6:30 पर।

साय 7 बजे आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना सेती, और साय 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12

वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से यह कार्यक्रम रिले किया जाएगा और 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्हारे गांव। कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम महफिल के अंतर्गत आप सुनेंगे गजलें और कल रात 10 बजे आप सुनेंगे आज प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों का रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया और कांग्रेस द्वारा SIR पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की। रेवाड़ी में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन। श्री सतीश पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब, किसानों सहित हर वर्ग के लिए काम किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद में मातृ शक्ति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर व हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल स्थित महर्षि दयानंद चौक पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके उपरांत श्री सुरेंद्र नागर ने पंजाबी धर्मशाला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों को सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है और बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद किया जा रहा है।
1: नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम है, हमारे बुद्धिजीवी सम्मेलन है, हमारी अगर आप बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारी जीरो बजट फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, योगा दिवस इसमें कार्यक्रम होगा, अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के अंतर्गत आज पलवल में यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान में मैंने भी आज यहाँ भाग लिया।
0: पत्रकारों से सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देती है, लेकिन जिन राज्यों में जीत के बाद सरकार बना लेती है वहां चुनाव आयोग व ईवीएम की बात नहीं करती। कांग्रेस द्वारा SIR पर प्रश्न उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। सम्मेलन में शामिल हुए होटल से विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि बुद्धिजीवी सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गांव फतेहपुर बिलोच के 148 पात्र लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा आवंटित 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री वितरित

0: की। इस अवसर पर श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि भूखंड की रजिस्ट्री केवल कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि लाभार्थियों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। इससे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा वे अपने स्वयं के घर का सपना साकार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करोड़ों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी के एक स्कूल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रभारी एवं राजस्थान से नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए श्री पूनिया ने एसआईआर की सराहना की। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य वास्तविक मतदाता के साथ साथ भारतीय नागरिक की भी पहचान करना है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद से ही घुसपैठिए देश छोड़कर जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का ही परिणाम है कि कांग्रेस राज में देश में दो ही एम्स थे, लेकिन गत 12 वर्ष में 15 एम्स तैयार किए गए हैं। इनमें से रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में बनने वाला एम्स भी है। इस एम्स से न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, बुद्धिजीवी सम्मेलन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सहित अन्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कार्य किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। जींद में देवी शक्ति सेंटर इकाई द्वारा मातृ शक्ति के सहयोग से एक विशेष रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। मीडिया से बातचीत में नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने आयोजकों और रक्तदाताओं की जमकर सराहना की।
1: ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सभी आयोजककर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ऐसे शुरुआत करी। मैं कपल भी है और अनेक मेरी बहनें भी है जिन्होंने आज रक्तदान भी किया है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता सकती हूँ डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को खून की कितनी जरूरत पड़ती है, और आप अगर किसी को एक यूनिट रक्त अपना दान करते हैं तो वो किसी महिला की और उसके बच्चे की भी जान बचाने का कार्य करती है।
0: उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रक्तदान के पुनीत कार्य सहित हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा नागरिक अस्पताल हिसार के चिकित्सक दल के सहयोग से हिसार मिलिट्री स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में नागरिक अस्पताल के रक्त बैंक प्रभारी व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया,
2: यही प्रयास है हमारा, जितने से जितने नए रक्तदाता हम जोड़ सके, क्योंकि खून का अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दान से ही हम खून की पूर्ति को कर सकते हैं कि जो भी 18 साल से 65 साल के बीच में है और जिनका वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं, और जितने हमारे मेल भाई है वो हर 3 महीने के बाद दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो हर 4 महीने के बाद। जरूरत है सिर्फ हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। कि आप अपने जन्म दिवस पे कोई अपनी वर्षगांठ है उसमें जरूर जोड़े रक्तदान से।
0: डॉक्टर सुशील गर्ग ने आमजन से नियमित रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्त देने के 5 बड़े फायदे हैं। एक तो रक्तदाता की मेडिकल जांच होती रहती है, काला पीलिया, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों की जांच हो जाती है। अम्बाला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपायुक्त एवं अध्यक्ष अजय सिंह तोमर एवं सचिव विजय लक्ष्मी के मार्गदर्शन में अम्बाला शहर के रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने किया। शिविर में स्टार रक्तदाता रजिंदर गर्ग ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर नीतू सचदेवा के

0: अगुवाई में अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल की रक्त बैंक की टीम ने 26 यूनिट रक्त एकत्रित किया। सभी रक्तदाताओं को बैच प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद के सेक्टर 8 निवासी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा देश के पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हो गए हैं। वे अब तक 183 बार रक्तदान कर चुके हैं और 89 बार प्लेटलेट्स दान और 1 बार प्लाज्मा दान कर चुके हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि उनकी रक्तदान यात्रा वर्ष 1990 में एनसीसी कैडेट के रूप में शुरू हुई थी। पुत्र के जन्म के समय रक्त की आवश्यकता ने उन्हें इस महादान के महत्व का एहसास कराया, जिसके बाद उन्होंने जीवन भर रक्तदान करने का संकल्प लिया।
1: मैं 183 बार रक्तदान, 89 बार प्लेटलेट और 1 बार प्लाज्मा दान कर चुका हूं। मैं समस्त देशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस पर बधाई देता हूं और विशेष रूप से उन रक्तदाताओं को, उन शिविर आयोजकों को जो रक्तदान के माध्यम से अमूल्य जीवन बचाने का काम करते हैं। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। रक्तदान का कोई अन्य विकल्प नहीं है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को रक्तदान जैसा अमूल्य उपहार भेंट कर सकता है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी और अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे ईश वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:30 होने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं एजबिस्टन स्टेडियम बर्मिंघम इंग्लैंड, जहां से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण।

0: more of that. Okay, let's get into this team. You're going to bat first. You've had a little bit of tinkering in the batting lineup. Yastika's coming in, then Bharti's been in at different stages. Is one playing, both playing, or none at all?
1: Bharti's playing today, and Yastika did really well, but today we thought of going with the Bharti.
0: Okay, and it's going to be a tough pitch for your bowlers. What does that bowling unit look like?
1: We are going with 3 spinners and 2 medium pacers.
0: Here we go. All the best today, Hamid. I know you'll entertain.
1: Thank you.
0: Mate, come on in. What would you have done if you had won the toss?
2: I think if we won the toss, we're going to bat first as well, because it looked like a batting track.
0: Okay, talk to us. It hasn't been the best build-up in terms of performances as a team, but your batting unit, you've had 2 centurions, you've hit the fastest 50 ever in the game as well. Do you feel as if the batting unit is looking good?
2: Yeah, I think as a team, we are doing great in the batting and the bowling as well. So we know we have a good bowling unit, so we just need to improve in the batting side, so we are good to now.
0: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
2: Yeah, it's good.
0: Okay. How do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
2: Yeah, obviously it's looked like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
0: Okay. Any key in or outs for you for the team?
2: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be
0: The Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
2: Thank you. Thank you.
0: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
3: So very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today, Ovi Avaishali.
4: मुझे लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है. जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफी बेनिफिट भी मिलता जाएगा. सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने.
3: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandana, but of course Harmanpreet Kaur. But just to carry that conversation forward very quickly, जो आपने यहाँ बात रखी है वैशाली की, जैसे जैसे ये विकेट और पुराना हो गया, पिच होगी, सो इट्स अ गुड विकेट अभी बैट करने के लिए, लेकिन बाद में बोलो फ्रेंडली हो जाएगा. कम टू यू मोनो ऑन दैट, वी सॉ बोथ द कैप्टन जंपिंग ओवर देयर एट द चॉइस ऑफ हैविंग चोजन टू बैट फर्स्ट टुडे, एंड गिवन द फैक्ट दैट ऑल्सो वी हैव भारती कमिंग बैक इन टू द प्लेइंग 11 फॉर अस टुडे, डू यू थिंक दैट्स एन added advantage in terms of batting for India?
5: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांझना हो या शिफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करने के लिए भारती फुल मालिक को आज रखा गया है टीम में. हरमनप्रीत कौर ने अच्छे 2 हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष है. तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है. फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है. तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है. तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए.
6: जी हाँ, बिल्कुल. भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मार मारी है. कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया. जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बायलैटरल सीरीज हुई थी, वहां हमने देखा कि 200 से ज्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के, वहां वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई. क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
7: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर होम ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, इन रेस्ट ऑफ द मैच

0: that is in South Africa and also in England and Ireland, they have lost all matches except one which they won. So generally, if you see their batting revolves around Fatima Sana. If she gets out early, then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So in wickets ke upar, मेरे ख्याल से हम अगर बैटिंग फर्स्ट अभी हम कर रहे हैं, बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, तो अगर हम स्कोर 170 से ऊपर कर देते हैं तो इट बी ए वेरी चैलेंजिंग ट्रॉफी फॉर पाकिस्तान एंड वी शुड बी एबल टू बीट देम।
1: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
2: जी एंड आनंद, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर। आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085। आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थ सारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। वैशाली, वेलकम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीइंग अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज भी देखा कि वन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन थ्री स्पिनर्स एंड टू मीडियम पेसर्स। फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेकर उतर रहे हैं?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
3: हम जानना चाहते हैं कि हम टीम जो है ना आज के स्कोर खड़ा करे, कम से कम 250 का स्कोर हो और बढ़िया फील्डिंग करें।
1: 250 की उम्मीद लगा रहे हैं। जी वैशाली,
4: जैसे कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति वंदना जब उनके सामने नासिर संधू और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति वंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति वंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ इनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, उनको नी इंजरी है। सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी। आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की, 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधू जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम 9 विकेट हैं। तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम है और वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहां किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी? क्योंकि पिच पर काफी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
5: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में। इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है। ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट, तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा। और यहां पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहां बचना बहुत जरूरी है।
2: Right, and we're told we have another listener joining us right now with us. Namaskar, good evening.
6: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश पली बोल रहा हूँ।
2: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप।
6: जी मैं बोला था कि हम सभी जानते हैं कि ऋचा घोष जो हमारे विकेट पर बैट्समैन जो है वो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, तो उन्हें हम नंबर तीन पे क्या भेज सकते हैं, क्योंकि पहले से अगर दबाव में डाल दें तो विपरीत टीम को तो बहुत ही मामला जरूर फायदेमंद होगा।
2: राइट, आई विल टेक दैट क्वेश्चन स्ट्रेट टू आवर एक्सपर्ट कर्नल गुप्ता। वुड यू वांट टू एड्रेस दैट ऋचा घोष कमिंग इन एट नंबर थ्री इज हिज ask or suggestion, how good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
0: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen and their experts in their position, and Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They'll, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
2: राइट, जस्ट एक क्वेश्चन विद वैशाली ऑल्सो आपके पास आऊंगी मैं। आनंद ने भी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व, डू यू थिंक इट इज नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग the kind of cricket they are playing?
4: I think it's a mindset. क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो। एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। और अभी मैं एक और चीज ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जहां पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहां जाके अपने आप को शो करती है। हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती है। और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसने उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मजेदार लगता है, और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी।
1: जी बिल्कुल, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना है, शेफाली वर्मा है, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी और क्रांति गौड़। इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया। थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं, और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं। मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
5: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है। हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था। अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है। रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर व्हाई, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है। और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है।
2: राइट, एंड वेलकम टू मोना, जस्ट टू टेक दैट क्वेश्चन फॉरवर्ड, बिकॉज़ आप जवाब देना चाह रहे थे अबाउट हाउ द क्रिकेट ऑफ बोथ द कंट्रीज हैज इवॉल्वड एंड वेदर पॉसिबली इंडिया का क्रिकेट शायद ज्यादा उच्च हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान का क्रिकेट।
5: साक्षी, आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों देश कहाँ ठहरते हैं महिला क्रिकेट में, ये आपका क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय

टीम खासतौर पर WPL आने के बाद से या फिर एक्सपोजर की हम बात करें तो लगातार खेलती आ रही है और पाकिस्तान दो साल में एक या दो श्रृंखलाएं खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ।

0: या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है। आप कितनी साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे वो काफी मायने रखता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी। 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रंप कार्ड साबित हो सकती है इस वर्ल्ड कप में।
2: देखिए श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने डब्ल्यूपीएल में अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाइएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज वेरी गुड एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका इंग्लैंड शी इज टेकिंग लॉट ऑफ विकेट्स, टू विकेट्स, थ्री विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज टेकन, सो शी इज वेरी गुड। बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
1: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा हूं, कर रही है।
2: या शी हैज जस्ट टेकन इन वन मैच 5 विकेट्स, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन डब्ल्यूपीएल एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, सो दीज थ्री स्पिनर्स वी आर लुकिंग एट एंड अरुंधति द फास्ट बॉलर ऑल्सो शी इज डन वेल, तो आवर बोलिंग इज क्वाइट गुड व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद पाकिस्तान।
3: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawang of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Rona, aapke paas aa jaate hai is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain, Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets, 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
1: हमारे इस सवाल के जवाब पर आएंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
4: जी नमस्कार आदाब।
1: जी नमस्ते।
4: जी मैं मुस्तकीम मुद्दा बात कर रहा हूँ गुजरात से।
1: जी बताएं क्या बताना चाहते हैं
4: आप। जी सबसे पहले तो हम आकाशवाणी का आभारी है कि आप रेडियो पे क्रिकेट कॉमेंट्री प्रसारित कर रहे हैं।
1: जी
4: उम्मीद है कि आगे आने वाले भारत के जो मैचेस हैं इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, उसकी भी कमेंट्री होगी रेडियो पर।
1: जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे।
4: जी जी, और भारत के मेंस टीम के भी मैचेस की भी कमेंट्री रेडियो पर जरूर लाए सर।
1: आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं?
4: आज तो बस भारत ने टॉस जीता है और भारतीय टीम को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम 170-180 रन का टारगेट खड़ा करेगी और भारत मैच जीतेगा।
1: जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं। जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी।
0: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी है और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खासतौर पर दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही, उस लाइन में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं, तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारतीय फूलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर है जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती है।
5: अगर भारतीय की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है। जैसे कि हम देखें अगर कंपेरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही है लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका जिंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आए, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करे और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करे।
3: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल

0: Rajan ask you, does India go in as heavy favorites in the game today?
1: Oh yes, we are heavy favorites, and I'm hoping for a one-sided match.
0: One-sided, wow. Mona ji?
2: Hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है. और जैसे हम बार बार बात करें कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है. काफी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखते हैं. तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी कि वो नक्शी कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे.
3: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है. और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहां पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
1: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वुमेन्स बड़े आराम से जीत रहे हैं. तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार, एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे.
3: जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे. वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है. जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है.
4: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन हम लूट सकते हैं उतने रन हम लूटे. हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफी टाइम तक देखा है. और स्मृति वर्मा का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में.
3: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं. तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है. बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं. भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है. वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार.
4: Thank you.
5: First ball 20.

0: काव्या इकबाल को गेंदबाजी के मौके पर लगाया था, वो कहीं ना कहीं वो प्लॉय वो कामयाब होता हुआ बिल्कुल। और इस गेंद पर लेग स्टंप की तरफ पहले से ही मानो हटकर वो इरादा बना चुके थे शेफाली वर्मा कि उस गेंद को कट करेंगे, और बहुत ही चतुराई के साथ वहां पर साध्या इकबाल ने भी गेंद की दिशा को लेग स्टंप की तरफ रखा और जैसे ही कट करने की कोशिश की गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर मुनीवा अली ने कोई कोताही नहीं बरते आसानी के साथ उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया और इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहे पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर।
1: जेनिमा रॉड्रिग्ज इज द न्यू बैटर एंड साध्या इकबाल मिसेस हर मार्क दिस टाइम अराउंड, डिलीवर्स दिस वन डाउन द लेग साइड ऑन अ गुड लेंथ, टू फार फॉर जेनिमा टू मेक कॉन्टैक्ट। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, रिमेंबर recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander. Obviously Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern day cricket to counter the left-arm spinner. However, today India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Saadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length, presses forward as Jemima Rodriguez and wards it off towards extra cover. End of the first over, 7-1.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: मूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।

0: टाइगर 1-4-4-7-7।
1: तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं, और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 129 के। काफी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से, और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से आनी पारी को आगे बढ़ाती है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा, और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने, और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगे या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगे। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहां पर, ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटी हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगली गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, बाई तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है। And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stump. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
2: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई। और निश्चित रूप से जेमिमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर। फातिमा साना जरूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की, एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नजदीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती इस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई है जेमिमा रॉड्रिक्स, अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है।

0: और खाता अभी तक नहीं खुला है। शतानंद वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को
1: अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का सीधा प्रसारण। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज रिले की प्रतीक्षा करें।

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें, ये साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेनस्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेनस्ट्रीम मीडिया, चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी,
2: तो हमारे युवा लगभग 30 40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जो कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी वर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर,

0: इसके अलावा भी हमने देखा है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमने हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि हुनी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना थोरियन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
1: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि हुमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। विंडिकेशन ऑफ हुमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि हुमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक थ्री स्टेज प्रोग्राम दिया। जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ग्लूकोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ यह रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
0: उसकी मात्रा भी सर कम है,
1: मात्रा भी कम है। और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो हुमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
0: जी।
1: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
0: जी,
1: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, सोडियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ी तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
0: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
0: जी।
1: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोडमैप तैयार किया गया था, 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया।

0: क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
1: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में यहाँ पर 1970 के दशक में पहुंचे, 80। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
0: जी।
1: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
0: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि ये जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
1: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों को भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
0: जी,
1: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वैन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
0: जी।
1: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
0: जी।
1: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सारी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटर, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
0: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
1: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर
0: जी,
1: पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान शोध टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चलें।
0: सर ये इससे भी कनेक्ट

0: है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग अलग
1: कंपनी। जी अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए। और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के बड़ी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक, और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम करके 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 हैं दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो इजराइली इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले, और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है। अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
0: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
0: जी,
1: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ यह है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, जो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके, और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
0: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
1: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
0: जी,
1: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज कंपेयर्ड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
0: बिल्कुल सर, मैं कोई फाइनल मैसेज, 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ उसको लेकर दर्शकों तक,
1: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
0: जी।
1: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयाज, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. and your host Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability

0: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का प्रसारण।
1: इंडियन स्पेक्टेटर्स इन द स्टैंड्स आर जंपिंग फॉर जॉय। ये लगा आभा का छक्का।
2: इस छक्के के साथ ही मानो स्मृति कहना चाह रही हूं हरमनप्रीत को कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। क्या शानदार अंदाज में उन्होंने इस गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। उसके बाद जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है।
3: शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर क्रीज इन ऑर्डर टू हिट दिस वन। इट वॉज डिलीवर ऑन अ लेंथ फ्रॉम ओवर द विकेट बाय द लेफ्ट आर्म सीमर हु हैज बीन सुपर इंप्रेसिव टुडे। तास्मिया रुबाब वी आर टॉकिंग अबाउट एंड स्मृति मानधना द गुड थिंग वाज दैट शी स्टेप्ड out of a crease after the ball had left the bowler's hand and therefore there was absolutely no chance for Rubab to make any sort of adjustment. The next delivery on a good length, this time Mandhana very cleverly hangs back because she was expecting the bowler to shorten her length. However, Rubab did not do that and in the end it has been tucked away neatly towards square leg for a comfortable single. Mandhana on to 35, India 61 for 2. Next delivery is a fuller length delivery this time around from Tasmiya Rubab and there's a chance of a run out. However, a big desperate dive from Smriti Mandhana ensures that she is home and the run has been taken. She gets up, dusts herself off, takes her gloves off and then gives a thumbs up to her partner at the other end saying that I'm safe and sound, don't you worry about anything. It was on a fuller length in line with the stumps and Harmanpreet Kaur went onto the back foot and after that she used her wrists to close the face and digged it towards the empty mid-wicket region. The bowler herself ran, picked it up and hurled it back towards the stump. Alas, she could not score a direct hit or else Mandhana might have been in trouble. The next delivery is a bit of a cutter delivered on the shorter side of good length, allows Harmanpreet to hang back and swish across the line. The ball goes towards deep backward square leg, allows for a comfortable single which takes India's score to 64 for 2 after 9.4 overs. So pretty eventful these middle overs are turning out to be, just like you predicted, Ashish.
2: जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो मोमेंटम अब इन दोनों बैटर्स को हासिल हो चुका है क्या उसको जारी रख पाएंगे। फिलहाल अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने में कामयाब रही थी। हालांकि वहां पर प्रोटेक्शन है, फील्डर ने गेंद को रोका सीमा रेखा से करीब करीब 8-10 गज अंदर, लेकिन तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बैटर्स ने अपना छोर बदल दिया था।
3: So the score moving to 65 with that. 9.5 overs are done. Harmanpreet Kaur on 20. She is back on strike after that single that was taken by Smriti Mandhana. Last delivery of the 10th over coming up. Here comes Rubab and beats the bat. It was angled away towards the offside and hung back did the Indian captain. Went for a cut shot but did not make contact. At least that is what we felt on the first look. However, Rubab has made a polite inquiry for caught behind. The umpire has denied it. Then she has a conversation with her captain Fatima Sana, possibly discussing the possibilities of opting for DRS. However, Fatima Sana denies it. They do not opt for DRS. Remember, 2 reviews per side per innings are allowed in this particular World Cup. End of the 10th over, 65 for 2 India.
2: भले ही एग्जिस्टेंट पर महिला क्रिकेट में जो औसत स्कोर है वो 138 का है, लेकिन भारत तो यहां पर कम से कम 150-160 का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहेगा और देखना यह है कि क्या उस इरादे में कामयाब

अब भारतीय टीम हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 65 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और निश्चित रूप से कहना होगा कि 18 पर जब

0: स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नजदीक, तब तक आसानी के साथ एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 37 पर पहुंच चुके हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। हमारे स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंधना ने दोनों में ही अब तक T20 मुकाबलों में 86-86 छक्के लगा चुकी है। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गुलफिरोजा ने। शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस एक रन के साथ संतुष्ट। हरमनप्रीत एक रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद पैड पर टकराई, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद पैड पर टकराई थी, जिसकी वजह से कोई अपील नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत तेजी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी, वो अब 6.47 रन हो गई है, और दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है 45 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली अर्धशतक की साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में। Right, fifth delivery of the 11th over, and Smriti Mandhana unfolds an exquisite inside-out drive, gets 4 for it.
1: ये लगा आभा का चौका,
0: delivered on a good length. However, Smriti Mandhana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off and cover, and skipped away to the boundary. Mandhana into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease. However, Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandhana is able to clip that one away towards deep mid wicket, pick up a single. End of the 11th, 74 for 2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आपका के बारे

0: डायल करें 1-4-4-7-7।
1: देखिए मानना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ये उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है, 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमिंग के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं, लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को 1 या 2 गज अंदर रोका और रिलीज थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए स्मृति इन 2 रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 2 विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के क्षेत्र रक्षण को सराह रहे हैं। एक बार फिर से शमीम की अगली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंचे थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मांधना का। ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका 2रा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शुरुआत में भारत को झटके जरूर लगे, शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में।

0: वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जमीलमा का बल्ला आज ज्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन उसके बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद को लॉफ्ट कर दिया और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।
1: ये लगा चौका,
0: माफ कीजिएगा, 4 रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद, और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, 84 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा इस समय करते हुए नजर आ रही हैं स्मृति मंदाना। अपने हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, बार फिर से गेंद को लॉक करने की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार पूरी तरह से चूक गई थी, स्टंप के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेर दी थी वहां पर विकेटकीपर मुनीबा अली ने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का, और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो गिल्लियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा का, मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर, लेकिन स्मृति का पिछला पांव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था। Two things. First of all, these are first signs of turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandana had lunged forward and she had to stretch her back foot backwards as she realized that there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket for them. Right throughout this over, we saw that the offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed 4 fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandana went inside out, which is one of her strengths, and Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target, and yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they pushed one fielder back, Mandana very cleverly went over mid-on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandana all throughout the day today. She's currently batting on 54, and the good news is that the physio has done her job. Mandana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She's the second highest scorer in all of women's T20 internationals. Only Susie Bates ahead of her with 4,720 runs. Next delivery of the over from Rameen Shamim. Delivers this one with a flatter trajectory so that Smriti Mandana cannot use her feet. Delivers this one outside off as well. Mandana rocks back and then wards it off towards the point fielder. 145 के लगभग स्ट्राइक रेट स्मृति का, और 54 रन अब तक उनके खाते में। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की तरफ पहले से ही शफल करके आ चुकी थी, और चतुराई के साथ शमीम ने हालांकि गेंद को थोड़ा उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एंड वक्त पर बल्ला अड़ाने में कामयाब रही 1 रन के लिए। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सकता ड्यूप पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ ओवर की भी वहां पर समाप्ति हुई 85, 2 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है, और साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए, तो वो निश्चित रूप से इस समय काफी बढ़िया 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर ली है। तो ये साझेदारी यहां से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में जरूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ, एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी पनपी वहां पर स्मृति के साथ

0: उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 81 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी और कहीं ना कहीं इस बार अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी सादिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर 86, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 अतिरिक्त रन उसमें शामिल। अगले गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके हाथों से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: सायरा जबीन वहां पर थी, उनके लिए एक मौका था लेकिन अपने उस हाथों में उस गेंद को कैद नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस तरह से ये एक और जीवनदान और साथ ही साथ भारत और स्मृति के लिए ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के 93, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद एक बार फिर से तैयार वहां पर। भारतीय इस जोड़ी ने अब तक काफी मुतासिर किया है, खासतौर से स्मृति जिस तरह से अब बड़े शॉट लगा रही हैं और किसी तरह के का जो दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही वो भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। स्मृति 2 बार भी ड्रॉप हो चुकी है, 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर और फिर 55 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 2 जीवनदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ने अब तक भारत के लिए 62 रन अर्जित किए हैं 40 गेंदों का सामना करने के बाद। सादिया की अगली गेंद और इस बार हरमनप्रीत ने बहुत ही आसानी के साथ पैदल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा को जाकर टकराते हुए 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: दो फील्डर्स ने वहां पर कोशिश जरूर की थी, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। सादिया के इस ओवर में पहली गेंद वाइड थी और उसके बाद बल्ले से अब तक 11 रन आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक इस ओवर में भारतीय बैटर्स बटोर चुके हैं। फातिमा साना थोड़ा सा निराश होती थी, पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने में पाकिस्तान के गेंदबाज कामयाब नहीं रहे। पिछली 12 गेंदों में 30 रन बने हैं जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। शानदार प्रदर्शन स्मृति और हरमनप्रीत कौर के द्वारा और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस करते हुए 4 रन हासिल कर लिए हरमनप्रीत कौर ने।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: क्या बेहतरीन अंदाज में इस चौके को हासिल किया। 30-10 के दायरे के अंदर 4 फील्डरों की एक लंबी कतार मौजूद थी लेकिन उनके बीच में पॉइंट और कवर क्षेत्र के बीच में गेंद को प्लेस करते हुए उस चौके को अपने पक्ष में किया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के आप 101 बढ़कर के अब 104, 2 विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट लाई हो?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आशा के बारे

0: pick up a comfortable single with that. The Indian captain has moved to 31 of 28, 105 for 2. Our India, Pakistan have used 5 bowlers so far. Sadia Iqbal, Fatima Sana, Tasnia Rubab, Ramin Shamim and Nashra Sandhu, which means they do not have a lot of flexibility going towards the death overs. Now around the wicket to the left-hander comes Ramin Shamim. Delivers this one outside off, and Smriti Mandana was almost expecting it. Hence, she shuffled towards the offside, then sat down on a knee and unfurled the sweep shot. However, she could not find the kind of connection that she was looking for. The ball hit the top edge of the bat and then clattered into the grill of her helmet. We might see the mandatory concussion test following. Yes, indeed, the team physio is out in the middle. Going through the protocols, he would be asking Smriti Mandana a few questions, making sure that she's not showing any symptoms of concussion. But the replay on my monitor shows an interesting thing, that Ramin Shamim released this one along with the seam, which means she wasn't looking to spin the ball on that occasion, because what we saw previously, that whenever she has tried to spin the ball and delivered it outside the off stump, Smriti Mandana has gone inside out and hit her over the cover or extra cover region very skillfully, in a very exquisite, very stylish manner. Therefore, she's looking to bring the ball into the left-hander, but almost as if Mandana expected it, and hence she made that shuffle towards the offside and attempted the sweep. Faulty execution, yes, but the shot selection was spot on.
1: जी हाँ, एक अच्छा द्वंद गेंद और बल्लेबाजों के बीच में नजर आ रहा है इस समय बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर, और भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद। 64 रन बनाकर स्मृति मांदना खेल रही है, 42 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये रन बनाए हैं और 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं, लगभग 152 का स्ट्राइक रेट उनका है। और हरमनप्रीत कौर जो कि टीम की कप्तान है, 21 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं, 4 चौके उसमें शामिल हैं और 110 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका भी है। दोनों के बीच साझेदारी की यदि बात करें तो बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में तीसरे विकेट के लिए पनप चुकी है। 87 रनों की साझेदारी, 62 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बैटर्स ने भारत की टीम के लिए यहां पर अब तक बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से भारत अब एक बेहतर स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में नजर आ रहा है। अगर आप भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों के बीच इससे पूर्व 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 भारत के पक्ष में और 3 पाकिस्तान के पक्ष में। और T20 विश्व कप की यदि बात करें तो 8 कुल मुकाबलों में इससे पूर्व भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कागजों पर आप देखते हैं दर्पण, तो भारत का पलड़ा भारी है। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मैच के शुरुआत से, शुरू होने से पूर्व, कि भले ही चिर प्रतिद्वंदी है भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारत का ही भारी रहने वाला है। हालांकि शुरुआती झटके भारत को जरूर लगे, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के लिए पारी को बखूबी संभाला, और जिस तरह से उन्होंने अब तक 87 रनों की साझेदारी कर ली है तीसरे विकेट के लिए, भारत अब एक बेहतर स्थिति में इस मुकाबले में नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान पर चलता हुआ थोड़ी ही देर में संपन्न होगा, और 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 7.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 105 रन बटोरे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की यदि बात करें तो गेंदबाजी में कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान की टीम ने अब तक किया है। सादिया इकबाल ने 3 ओवर किए हैं, कोई मेडल नहीं, 34 रन, 1 विकेट उनके नाम, 11.33 का उनका इकोनॉमी रेट। फातिमा साना जो कि टीम की कप्तान है, उन्होंने अब तक 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 11 रन, कोई विकेट नहीं, 5.50 का उनका इकोनॉमी रेट। अब तक की सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रही हैं फातिमा साना, टीम की कप्तान। तास्निया रुबाब ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं, 18 रन, 1 विकेट उनके नाम, 6 का उनका इकोनॉमी रेट। और रमीम शमीम ने अब तक 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन दिए हैं, 7.14 का उनका इकोनॉमी रेट। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद की पहली गेंद शमीम के द्वारा, और इस बार फिर से इनसाइड आउट खेलते हुए स्मृति मंदाना ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारतीय समर्थक दर्शक इस समय बर्मिंगम के एजबेस्टन ग्राउंड पर झूम

0: पर मौजूद जरूर था, लेकिन उसके सामने से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कामयाब रही। इस अवसर पर ऋचा घोष ने चौके की मदद से अपना खाता खोला। भारत 114 चार विकेट के नुकसान पर, तीन गेंदों का आना बाकी है। सादिया इकबाल का एक कामयाब ओवर रहा है अब तक। आखिरी गेंद इस बार अराउंड द विकेट आते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच के नजदीक पहुंचते हुए ऋचा घोष ने इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया मिडाउन की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ और एक रन आसानी के साथ बटोर लेंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर शील्ड किया जा सके। 115 चार विकेट के नुकसान पर। 22 वर्ष की उम्र ऋचा घोष की सिलीगुड़ी से आती है, जहां पर बहुत ज्यादा महिलाएं क्रिकेट खेलती हुई संभवतः आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, महिलाओं में से हैं, जिन्होंने अपने लिए और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए नाम पैदा किया है। महिला क्रिकेट का जहां तक सवाल है, फील्ड पेसिंग में थोड़ा परिवर्तन वहां पर हरमनप्रीत कौर के लिए। इस समय ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी थर्ड मैन एक बैकवर्ड पॉइंट एक कवर और दो खिलाड़ी इस समय बिल्कुल सीमा रेखा पर नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अगली गेंद और इस बार हल्के से गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर फातिमा साना, गेंद को फील्ड कर लेंगी और एक रन तब तक बटोर लेंगी हरमनप्रीत कौर। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर अब हुआ 116 चार विकेट के नुकसान पर। एक और बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, भारतीय फुलमली जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय टीम में है थी, बल्कि पदार्पण उनका हुआ था 2019 में, लेकिन बहुत ज्यादा मुकाबले उन्होंने भारत के लिए नहीं खेले थे, मात्र 6 मुकाबले से पूर्व 7 वर्षों के बाद टीम में वापसी की थी, अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलने के बाद, लेकिन आज उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं, बहुत जल्दबाजी में वो स्लो खेल बैठी थी और स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौटी थी। अंतिम गेंद पर एक रन और भारत को, ओवर की समाप्ति 15 के बाद भारत 117 चार विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।

0: when you thought that India would be accelerating. This over has produced only 3 runs so far. The last ball, India would want a boundary. Nashra Sandhu would want to tidy up with a good ball. A good ball would be anything less than a boundary for her. Deliver this one outside off, and Harmanpreet Kaur unfolds the sweep shot. However, a very good diving effort at the mid-wicket boundary keeps her down to 2. By the looks of it, it's Aisha Zafar who has dived to her right and saved what looked like a certain boundary. So only 2 runs of the final ball as well. That over produces only 5. A good one for Pakistan. India would want more than 5 runs and over at this stage. 122 for 4.
1: 16 ओवर के बाद 122 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर है. जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस से भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहला विकेट भारत ने 6 पर गंवाया, दूसरा 18 पर, तीसरा 109 पर और चौथा विकेट भारत का 110 पर गिरा था. तीसरा और चौथा विकेट ड्रिंक्स इंटरवल के फौरन बाद गिरा और दर्पण, जैसा कि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि जब भी कोई ब्रेक होता है क्रिकेट में तो उसके बाद बहुत संभावना बढ़ जाती है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है बैटर की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और उसका खामियाजा अक्सर बैटर्स को भुगतना पड़ता है. और कोचिज अक्सर कहते हैं कि जब भी ड्रिंक्स ब्रेक हो या किसी भी तरीके का व्यवधान हो और उसके बाद खेल शुरू हो तो थोड़ी देर तक आप अपनी एकाग्रता को वापस हासिल करने की कोशिश कीजिए और फिर बड़े शॉट के लिए जाइए. फिर अलग गेंद और इस बार इस गेंद को इनसाइड आउट खेलना चाहते थे ऋचा घोष. बहुत अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, काफी देर गेंद हवा में थी, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके. इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 124 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर.
0: यू आर राइट आशीष दैट आफ्टर अ ब्रेक द बैटर शुड टेक टाइम, बट द क्वेश्चन इज Do we have time in T20 cricket? Harmanpreet Kaur, meanwhile, on strike. She is looking desperate and she unfurls an aerial flip shot. There's a fielder down there and she's caught it at the brink of the boundary. Fatima Sana punches the air in delight. She has dismissed her counterpart. The Pakistani captain gets out the Indian captain. Harmanpreet Kaur was looking desperate for a big shot. We talked you through it in the previous over as well. She shuffled towards the offside and hence that delivery was received by her on her pads. She unfurled an aerial flick shot and almost cleared the square leg boundary, almost being the key word. However, Natalia Parvez, who was stationed in the deep, hopped up and caught it. A good catch, and India have now lost their 5th wicket. 1, 2, 3, 4, 5.
1: शानदार कैच वहां पर लपका नतालिया परवेज ने और कहना होगा कि कप्तान ने कप्तान का विकेट ले लिया. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा साना गेंदबाजी के मोर्चे पर थी और हरमनप्रीत ने एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अपने प्रयास में वो कामयाब नहीं रही, उचित दूरी नहीं दे पाई और गेंद को वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ नतालिया परवेज ने अपने हाथों में कैच किया और हरमनप्रीत की पारी को समाप्त कर दिया. 36 के कुल स्कोर पर 36 रन 35 गेंदों का सामना करने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे. और अब दीप्ति शर्मा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो इस समय बीच मैदान पर हैं. 16.2 ओवर के बाद भारत 123 5 विकेट के नुकसान पर. 92 पारी में 1210 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, लगभग 105 का स्ट्राइक रेट है. और दीप्ति शर्मा ने पिछले ओडीआई विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी. तो देखना यह है कि इस T20 विश्व कप में क्या कुछ कर पाती हैं. फिलहाल पहले ही गेंद पर आकर के उन्होंने अपना खाता खोल लिया 2 रनों के साथ और इन 2 रनों की वजह से अब भारत का स्कोर बढ़कर के 125 5 विकेट के नुकसान पर.
0: That one was delivered from around the wicket by Fatima Sana onto the pad line. Deepti Sharma using her wrist to flick it away towards the mid-wicket region, and the running between the wickets was pretty impressive. This is something that Deepti has worked upon. Talk more about that after this ball. Fatima Sana once again around the wicket with the keeper up to the stumps, runs in, delivers this one on a drivable length, and Deepti Sharma hits it aerial. Luckily for her, the ball bounces before it goes to the extra cover fielder. It was a slowish ball from Fatima, just 92.2 kilometers per hour. एंड दीप्ति।

0: डायल करें 1-4-4-7-7।
1: पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना का एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी के विशेषण की बात करें तो 3 ओवर कोई मैडम नहीं, 18 रन और एक सफलता जो कि उन्होंने अपने पिछले ओवर के दौरान हासिल की। हरमनप्रीत कौर के रूप में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं अब तक इस पारी में पाकिस्तान की टीम का, जहां तक सवाल है। हरमन की यदि बात करें तो ये 12वां अवसर जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के द्वारा आउट की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा अवसर था जबकि प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान ने उन्हें आउट करके पवेलियन चलता किया। नए ओवर की शुरुआत

अपने पिछले ओवर के दौरान हासिल की। हरमनप्रीत कौर के रूप में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं अब तक इस पारी में पाकिस्तान की टीम का, जहां तक सवाल है। हरमन की यदि बात करें तो ये 12वां अवसर जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के द्वारा आउट की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा अवसर था जबकि प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान ने उन्हें आउट करके पवेलियन चमका किया। नए ओवर की शुरुआत